0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों, रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपने 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट के मल्हार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेन जी से धैर्य और जिम्मेदारी के साथ अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने वाले कार्यक्रम जरूरी हैं, इससे उनमें देश के प्रति जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू चेंग शू और टैन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया ई फैन और झांग शू शियान को हरा दिया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। इस बीच पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14

0: अपने घर को दीजिए मॉडर्न लुक अंबा मॉड्यूलर किचन के साथ,
1: भरपूर स्पेस, परफेक्ट फिनिशिंग और ढेरों डिजाइंस गारंटी के साथ।
0: पता दस्तूर नगर, MITC रोड, अमरावती।
2: श्रोतेहो, आपण ऐकत आहात आकाशवाणीचं अमरावती केंद्र आणि सध्या आपण आनंद घेत आहात हिंदी मिश्र संगीताचा कार्यक्रमात। आता पुढे ऐका जगजीत सिंग यांच्या स्वरात अटल बिहारी वाजपेयी यांची गीतरचना। या रचनेला संगीतबद्ध केलंय लालजी प्रेमजी यांनी।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की

0: अजौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष मान्यता प्राप्त जोड़ी से। और एम्स्टर्डम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है।
1: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की सप्त शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। तो तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने वाली संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में

0: देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
1: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हमको अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
0: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपए से बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेंजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शू शियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है।

0: असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.uae.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
1: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी इगुफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा दो जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says reforms are not compulsion but a commitment and conviction for government, asserts its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Home Minister Amit Shah hails West Bengal government for handing over 1,129 acres of land to BSF and SSB for India-Bangladesh border fencing within 45 days of coming to power. India and Nepal reaffirm commitment to strengthen bilateral cooperation in border management and security. BRICS tourism ministers adopt Jaipur declaration focusing on sustainable tourism, AI integration and seamless travel.

0: अपने घर को दीजिए मॉडर्न लुक अंबा मॉड्यूलर किचन के साथ।
1: भरपूर स्पेस, परफेक्ट फिनिशिंग और ढेरों डिजाइन्स गारंटी के साथ।
0: पता: दस्तूर नगर, MITC रोड, अमरावती।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं की एंड का। इस फिल्म का गीत आवाजें मिथुन और दीपाली की, सईद कादरी के बोल मिथुन का संगीत।

बिलाल सईद की आवाज और इन्हीं के संगीत में सुनिए कुमार का लिखा ये गीत, फिल्म का नाम बार बार देखो।

0: ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं हमारी अधूरी कहानी इस फिल्म का गीत, जिसे लिखा है कुणाल वर्मा ने, आवाज और संगीत अमी मिश्रा का।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं काबिल फिल्म का गीत, आवाजें जुबीन नौटियाल और पलक मुछाल की। नासिर फराज ने इसे लिखा है, राजेश रोशन का संगीत।

कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।

0: ऐसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर। किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
1: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: और आइए हम आपको सुनवाते हैं MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस फिल्म का गीत आवाज अरमान मलिक की, मनोज मुंतशिर ने इसे लिखा है, अमाल मलिक का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं शानदार फिल्म का गीत अमित त्रिवेदी और अमिताभ भट्टाचार्य की ने इसे लिखा है, अमित त्रिवेदी का संगीत और आवाज। फिल्म का नाम शानदार।

0: शानदार फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। श्रोते हो, आपण ऐकत आहात आकाशवाणीचं अमरावती केंद्र एफ एम बँड 101.5 MHz वर।
1: चटपटीत चमचमीत चवदार स्वाद ब्युटीफुल पदार्थ असो कुठलाही रुचकर बनवणार घरकुल।
2: घरकुल मसाले ज्यांच्या घरी वर्णावी त्यांची खवय्येगिरी।
1: म्हणून जेवण हवं असेल ठसकेबाज घरकुल मसाले आणा आज।

ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: नमस्कार।
1: तुम काला बाजार किसके लिए करते थे? रघुवीर के लिए।
2: रघुवीर के लिए?
1: जुर्म करने वाला चूंकि अपना बचाव नहीं करता और साफ अपने जुर्म को कबूल कर लेता है तो इसी से वो रहम का हकदार नहीं हो जाता। योर वर्शिप, आज तक जो कानून को दगा देता रहा अचानक आज वो शहीद बनने चला है। ये तो वही बात हुई कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। हमारा ही खून चूस चूस कर जो पलता रहा अचानक आज वो अपना खून हमें दान करने चला आया है। कड़ी से कड़ी सजा अदालत अगर ऐसे आदमी को नहीं देगी तो और किसे देगी?
0: ये आवाज फिल्म काला बाजार में उस मशहूर अदाकार की है जिसे दुनिया जानती है किशोर साहू के नाम से। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक किशोर साहू पर।

गुजरे दौर के सिनेमा के चहेते दर्शकों के लिए किशोर साहू एक सुपरिचित नाम है। बहुआयामी प्रतिभा के कलाकार किशोर साहू ने 1937 से 1980 के बीच 22 फिल्मों में अभिनय किया।

किया था। सन 1915 में तब के मध्य भारत और आज के छत्तीसगढ़ प्रांत के दुर्ग शहर में जन्म हुआ था किशोर साहू का। नागपुर के मॉरिस कॉलेज से उन्होंने बीए की पढ़ाई की थी। किशोर साहू के पिता रायगढ़ रियासत के दीवान थे। कॉलेज के दिनों से ही किशोर साहू कहानियां लिखा करते थे। अपने कहानी लेखन से ही वो सिने जगत के संपर्क में आए। तब के बंबई में उन्हें सिने जगत में पांव जमाने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। मुंबई में अशोक कुमार और देविका रानी के प्रयासों से किशोर साहू को बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म जीवन प्रभात में काम करने का मौका मिला। किशोर साहू ने कुछ अरसा मुंबई में और बिताया और फिर परिस्थितियों के चलते वापस नागपुर लौट गए। नागपुर में किशोर साहू के मित्र थे द्वारकादास डागा। उन्हीं के सहयोग से किशोर साहू ने बाद में मुंबई वापस लौटकर अपनी फिल्म निर्माण संस्था की नींव रखी। इस संस्था का नाम था द इंडिया आर्टिस्ट लिमिटेड। अपने इस बैनर तले उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई बहुरानी। अपने फिल्म बैनर तले किशोर साहू ने जो कुछ और मशहूर फिल्में निर्मित की उनके नाम हैं पूनम की रात, पुष्पांजलि, मयूर पंख और बेटी नैना साहू को लेकर बनाई गई फिल्म हरे कांच की चूड़ियां।

किशोर साहू अभिनेता, निर्माता, निर्देशक बनने से पहले लेखक थे। कहानी लेखन पर उनकी अच्छी पकड़ थी। उनकी ये प्रतिभा कई फिल्मों में नजर आती है। एक लेखक के रूप में उनकी चर्चित फिल्में हैं मयूर पंख, दिल अपना और प्रीत पराई, हरे कांच की चूड़ियां, औरत और तीन बहुरानिया। इस फिल्म की कहानी एक मध्यवर्गीय संयुक्त परिवार, उसके आर्थिक स्थिति और परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों को रेखांकित करती है। दिल अपना और प्रीत पराई का लेखन करने के साथ साथ किशोर साहू ने इस फिल्म को निर्देशित भी किया था। इस फिल्म के गीत आज भी बेहद लोकप्रिय।

0: सपना।
1: निर्देशक के रूप में किशोर साहू की अन्य मशहूर फिल्में हैं 1942 की कुंवारा बाप, राजा, शरारत, वीर कुणाल, सिंदूर, साजन, 1948 की नदिया के पार, सावन आया रे, काली घटा, मयूर पंख, हैमलेट, किस्मत का खेल, बड़े सरकार, गृहस्थी, घर बसा के देखो, हरे कांच की चूड़ियां, पुष्पांजलि, धुएं की लकीर और पूनम की रात।
0: तुम कहां ले चले हो सजन नलबेले, ये कौन सा जहां है बताओ तो, बताओ तो।
2: ये सब

फिल्म निर्देशक महेश कौल और साहित्यकार अमृतलाल नागर किशोर साहू के अभिन्न मित्रों में से थे। नागर जी ने किशोर साहू के लिए 3 फिल्में लिखी थीं, राजा, वीर कुणाल और कुंवारा बाप। फिल्म वीर कुणाल की नायिका थीं अभिनेत्री तनुजा और नूतन की मां शोभना समर्थ। सन 1942 में बनी फिल्म कुंवारा बाप और सन 1943 में बनी फिल्म राजा हास्य प्रधान फिल्में थी। इनमें स्वयं अमृतलाल नागर जी ने भी अभिनय किया था। किशोर साहू एक समर्थ अभिनेता थे। यूं तो उनके अभिनय से सजी कई फिल्में हैं, लेकिन जिन फिल्मों में उनके अभिनय को बहुत सराहना मिली उनमें से ही एक है फिल्म गाइड में किशोर साहू द्वारा निभाई गई रोजी बनी वहीदा रहमान के पति मार्को की भूमिका। ये गीत है फिल्म काली घटा का।

22 अगस्त सन 1986 को इस दुनिया में अपने जीवन रूपी रंगमंच की आखिरी भूमिका निभाकर किशोर साहू इस दुनिया से विदा हो गए। हमारे पास अब उनके अभिनय से सजीव फिल्में हैं और उनके परिजनों इष्ट मित्रों के पास हैं उनकी स्मृतियां।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक किशोर साहू पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का। संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत पोस्ट करते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और इस फेसबुक पेज पर जो इबारत होती है उसके जरिए हमारे श्रोताओं को एक चैलेंज मिलता है। वो चैलेंज ये होता है कि कुछ गाने छिपे होते हैं इस इबारत में, जिसके जरिए आपको पहचानना पड़ता है कि आज के कार्यक्रम का ताना बाना आखिर क्या है। तो चलिए आज की इबारत हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। दो लोगों की बातचीत है ये, चलो गानों में बात करते हैं। मतलब अरे मैं एक लाइन बोलूंगा जो किसी गाने की होगी, फिर तुम बोलना, लाइन बीच की भी हो सकती है। ठीक है, देखो मुश्किल लाइनें होंगी, चैलेंज मंजूर, शुरू करो। क्या दर्द किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी में दर्द नहीं। नारी दीवानी हूं पीड़ा की रानी, मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली। किसके ख्वाबों ने मेरी रातों से कुछ मांगा है, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। नए फूल फिर डगर में खिलेंगे, बहते चले हम मस्ती के धारों में। हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे खश खाकर, इसका कोई पेंच भी ढीला है। हम न बोलेंगे कभी, जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं। कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझो।

मजा, तुम्हें तो बड़े गाने याद हैं। अगली बार फिर खेलेंगे ये खेल। ये है आज की इबारत और बहुत बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं और आज के इस कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करते हैं इस गाने के साथ। और आप भी बताइए कि क्या गानों के जरिए आप भी करते हैं संवाद। ये भी बताइए कि इस गाने को किस शायर ने लिखा है।

शिक्षुता ही लिखती हैं कि यूनुसी ये संवाद वाली इबारत तो जैसे अब आपकी पहचान हो गई है, हम भी कभी कभी करते हैं गीतों के माध्यम से बातें और बड़ा ही मजा आता है। वहीं दूसरी तरफ एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि भाई आपसे किसी सार गर्भित गद्यांश की उम्मीद रहती है और गानों की आधी अधूरी पंक्तियां जोड़कर आप इबारत ना दिया करें। तो भाई हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो पिछले कुछ हफ्तों से जब भी सुरीला सफर कार्यक्रम में आपका ये दोस्त आता है, दो लोगों की बातचीत को गानों में पिरोता है और उसके जरिए एक इबारत तैयार होती है। अगर आपको लगता है कि ये ठीक तरीका नहीं है तो बाकायदा गद्यांश लिखा जा सकता है जिसमें कोई शब्द होंगे और उन शब्दों पर गाने होंगे, पर जिस तरह से आज बहुत ही मुश्किल पंक्तियों को मैंने पिरो दिया है गानों में, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें गाने खोजने में बहुत मजा आया और बहुत देर लगी गाने खोजने में? कई ऐसे लोग हैं मैंने देखा कि जिनके गानों को लेकर जवाब बड़े गलत आए हैं। मतलब ये है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ पंक्तियों को थोड़ा सा गलत पहचान लिया है, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा बहुत अच्छे से पहचाना। कैफी आजमी का लिखा हुआ ये गाना था, कुछ रोता है जिन्होंने से बोला है, गाना है गुलजार साहब का जो कि नहीं है। चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और ये जो गाना है ये किसी के आने से चेहरे पर चमक जाने वाली खुशी का गाना है। इस वीकेंड आपके घर कौन आ रहा है?

क्या बात है, अभी अभी एक कमेंट ही आया है कि वक्त के इस गाने से चेहरे पर खुशी छा जाती है क्योंकि इस गाने में बजा पियानो इनॉक डैनियल साहब का बजाया हुआ है। इत्तेफाक की बात यह है कि बीते दिनों जब मैं पुणे गया तो इनॉक डैनियल साहब से मेरी मुलाकात भी हुई थी। बहरहाल एक श्रोता है जिन्होंने लिखा कि इस गाने में साधना बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जो लिख रही है कि अभी तो राखी आ रही है और अपनी बेटी का इंतजार है, वो अपनी नन्ही परी के साथ आने वाली है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि राखी है इसलिए मैं अपनी बहनों और बेटी का इंतजार कर रहा हूं। एक श्रोता को जन्माष्टमी पर कृष्ण जी का इंतजार है। तो इसके अलावा एक और श्रोता है जिनके ससुराल वाले आ रहे हैं और वो त्रिकोणीय फल बना रहे हैं, समोसा बना रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो आज कहीं जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनके घर कुछ लोग आ रहे हैं और उन्हें उनके आने से खुशी है। एक श्रोता है जिन्हें कुछ पत्रिकाओं की ऑनलाइन उन्होंने उनके ऑर्डर दिए थे तो उनका इंतजार है, यानी आंखों में चमक तब आएगी जब वो मैगजीन्स आ जाएंगी। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिख रही है कि मैं आलसी होना चाहती थी लेकिन आज कोशिश किया और पहली हल कर ली। आज की इबारत कठिन है, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। कठिन आज की इबारत बाकायदा है और बहुत ज्यादा कठिन बनाई गई है। चलिए कठिनाई से आगे बढ़ते हैं और दूसरी कठिनाई की तरफ बढ़ते हैं। एक कठिनाई से दूसरी कठिनाई की तरफ। आप में से जो लोग ईमानदारी से बताना चाहते हैं बताएं कि आज कौन है जो उनसे रूठा हुआ है। पढ़ने जैसे संदेश होंगे तो हम यहां पढ़कर बताएंगे, क्या पता ये संदेश सुनकर रूठा हुआ कोई मान जाए। दूसरी चीज, रूठे हुए को मनाने का आपका फेवरेट तरीका क्या है।

भाई कितना मजा आया ये पढ़ के कि एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे साथ रूठने वाली तो हमारी नवासी है, एक चॉकलेट और एक आइसक्रीम में मान जाती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रही है कि काश मैं इधर बात कर सकती लेकिन अपनी सहेली के साथ अस्पताल में हूँ, मतलब किसी मरीज को देखने के लिए गई हुई है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कान पकड़ो और कुछ अपनी शक्ल ऐसी बनाओ के सामने वाले को लगे कि मस्का मारा जा रहा है। भाई बड़े अनुभवी हैं आप, बड़ी स्टाइल से आपने बताया है, एकदम तस्वीर आंखों के आगे खींच गई। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि मेरी श्रीमती जब मुझसे रूठ जाती है तब मैं उन्हें अदरक इलायची वाली चाय बनाकर खुद अपने हाथों से पिलाता हूँ। देखिए भाई सीखिए कुछ। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने रूठने बनाने के कुछ नुस्खे लिखे हैं। आज के इस कार्यक्रम में ऐसा भी होगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अगर आप में से किसी श्रोता को रूठने बनाने वाले जो नुस्खे हैं अभी भी पता हैं और उसमें से कुछ नुस्खे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं तो जरा लिख दीजिए, हम जरूर शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई मुझसे रूठे ना और अगर गलती से कोई रूठ लेता है तो मैं माफी मांग लेता हूं। और इसके अलावा एक और श्रोता है, इन्होंने बड़ा शॉर्टकट मारा है, लिखते हैं कि अब तो बहुत इजी है रूठने वाले को मनाने के लिए, व्हाट्सअप ऑन करो, फ्लावर्स, केक और सॉरी सेंड कर दो। भाई अगर इतने आसानी से लोग मान जाए तो फिर बात ही क्या है। व्हाट्सएप पर नकली फ्लावर्स, नकली केक, नकली सॉरी, क्या इससे कोई मानता है। चलिए अब यह है कि एक श्रोता जो है उन्हें शायरी सूझी, उन्होंने लिखा, रूठना तुम्हारा भी अजीब मौसम है, तुम चुप हो तो कमरे में रखी चीजें भी जैसे धीरे धीरे बोलने लगती हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि रूठते तो हम भी हैं पर एक बात हमें हमारी अच्छी लगती है कि हम मान भी जाते हैं, ज्यादा देर तक हम रूठे नहीं रह सकते, ये भी एक मजेदार चीज है। तो आज के इस कार्यक्रम का रास्ता जो है वो रूठने मनाने की तरफ मुड़ गया है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक उम्र के बाद कोई किसी को मनाता नहीं है, ये भी अनुभव की बात है। फिर एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारी रूठने की उम्र पार हो चुकी है, अब तो सिर्फ समझौते में घुस

रही है और इसके अलावा कई श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत कठिन है, लेकिन इस इबारत में जो बातचीत का अंदाज है वो पसंद आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलते हैं भीगने की तरफ। इस बार की बारिश में सबसे ज्यादा कब भीगे आप, ये जरूर बताइएगा कि इस बार की बारिश में सबसे ज्यादा कब भीगे आप। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम रेनकोट या छतरी लेकर नहीं निकले तब जरूर ऊपर वाला टॉर्च लगा के देख लेता है और आपके ऊपर बारिश करवा देता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि मौका देखकर बारिश ने आपके ऊपर लगाया हो चौका?

एक और श्रोता है जो लिखती है कि बारिश में भीगना भी बड़ा मजेदार अनुभव है। पहली बूंद चेहरे पर पड़ती है तो लगता है आसमान ने चुपके से छेड़ दिया हो। फिर बाल कपड़े जूते सब अपनी अपनी शिकायत लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन मन है कि बचपन की तरफ लौटना चाहता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि मुझे भीगना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे भीगने वाले गीत पसंद है। इसके अलावा एक और श्रोता है, कहते हैं कि जैसे ही घर से निकले तो बारिश ने भिगो दिया, जब तक गाड़ी तक पहुंचे तब तक भीग चुके थे। इसके अलावा एक और श्रोता है, अचानक बारिश में भीगने का ज्यादा अनुभव तो नहीं, पर बारिश के मौसम में धूप खिली हो और छत पर कपड़े सुखाने डालें तो बादल जैसे भागे दौड़े चले आते हैं और हम कितना भी भाग कर जाए सूखे हुए कपड़ों को गीले होने से बचा नहीं पाते। ये मजेदार बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बरसात में खेतों की मेड़ों पर भीगते भीगते मजा आता है। बहरहाल खेतों पर छाता लेकर श्रीमती जी गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई हूं तो बात ही क्या है। एक और श्रोता है, लिखते हैं कि कहीं बाइक चलाता हूं तो भीग जाता हूं अक्सर। एक और श्रोता है, लिखते हैं कि धर्मशाला ओवरब्रिज में ड्यूटी जाते समय अचानक बारिश होने लगी और मैं भीग गया। घर वापस गया, कपड़े बदले, रेनकोट पहना और उसके बाद वापस काम पर गया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है, भात लावणी यानी चावल की रोपाई देखने नसरापुर गए थे, तब बारिश में बहुत ज्यादा भीगे थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अगर मेरी वाइफ रूठ जाती है तो मैं सॉरी कहता हूं और जादू की झप्पी देता हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि भाई बहुत ज्यादा वायरल फीवर फैला हुआ है आजकल, तो इसलिए भीगने से हम बचते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में तो इतनी बारिश ही नहीं हुई कि हम भीग जाएं। और इसके अलावा इतनी सारी बातें लोगों ने बारिश के बारे में की है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे यहाँ सीजन की बारिश कम होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो हम अपने टेरेस पर चले जाते हैं और भीगते हैं। बारिश की इतनी सारी बातें, कोई तो ऐसा होगा जो इस वक्त कार्यक्रम सुनते हुए भी बारिश का मजा ले रहा होगा, भीग रहा होगा। ये सच है कि वायरल फीवर का डर रहता है, लेकिन ये भी होता है कि बारिश हुई और लोग निकल पड़े लॉन्ग ड्राइव पर। आपके शहर के आसपास ऐसी कौन सी जगह हैं जहां बारिश में मनाया जा सकता है पिकनिक, जहां लोगों की भीड़ आती है बारिश के मजे लेने के लिए।

भाई, हमने चाहा था कि आप में से बहुत सारे लोग भीगने के अपने किस्से बताएं, तो बड़ा मजा आए। एक श्रोता है, लिख रहे हैं कि फिलिस्तीन में तो पिछले 7 दिनों में खूब बारिश हुई और काम ही ऐसा है कि बाइक में चाहे रेनकोट भी पहनना पड़ता है, तब भी सारा बदन पानी से तर हो जाता है।

इस गाने के जरिए योगेश जी बहुत बहुत बहुत याद आए, आपके इस दोस्त को उनके साथ बहुत वक्त बिताने का मौका मिला है, और एक बेमिसाल इंसान, सादा लेकिन कितने गहरे गीतकार, कभी उनके बारे में बातें की जाएंगी। एक श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि गाइड के मार्को यानी किशोर साहू जी, उनकी याद का दिन है। जी हाँ, किशोर साहू, उनकी याद का दिन आज 22 अगस्त 1980 को उनका निधन हुआ था। और किशोर साहू मध्य प्रदेश के राजनांदगांव के रहने वाले थे और वहां से मुंबई आए और एक्टिंग की दुनिया में तो नाम कमाया, लेकिन वो एक निर्देशक भी थे और फिल्म लेखक भी थे। बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने कुछ फिल्में लिखी हैं और इसके अलावा कई फिल्मों का निर्देशन भी किया है। क्या आपको पता है कि किशोर साहू की निर्देशित मशहूर फिल्में कौन सी हैं? एक फिल्म मैं बताता हूं, बाकी आप बताइएगा। हरे कांच की चूड़ियां किशोर साहू के निर्देशन वाली फिल्म थी। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि मायूसी में गाने सुबह पर आते हैं, बड़ी बड़ी सुनी सुनी सी है जिंदगी, किसका रास्ता देखें, जिंदगी देने वाले सुन। एक श्रोता है जो कहते हैं अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, और इसके अलावा कहानियां सुनाती है पवन नाती जाती, ये श्रोता को बहुत ज्यादा पसंद है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज तो जैसे गानों का रिवीजन हो रहा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इंदौर में एक पुराना सिनेमा घर है मिल्की वे, जिसकी छत पतरे की थी और बारिश आने पर अलग ही पार्श्व संगीत बजता था। अब मुझे तो जावेद साहब के बोल याद आ गए, बजता है जल तरंग टीन की छत पे यूं, शायद इसी तरह के किसी एहसास के लिए उन्होंने लिखा होगा, बजता है जल तरंग टीन की छत पे यूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि किशोर कुमार की मखमली आवाज, योगेश के दार्शनिक बोल, राजेश रोशन का ये संगीत, ये गाना अपने आप में अनमोल है। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे श्रोता अभी भी किशोर साहू को याद कर रहे हैं, मार्को जिनकी याद का दिन आज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अनमोल गाने की तरफ बढ़ते हैं जो एक बहुत नाजुक से एहसास को बयां करता है। सवाल यह है कि इस गाने को किसने लिखा?

श्रोता हैं जो लिखते हैं कि शायद ये गीत कमाल अमरोही ने लिखा है, जो गलत जवाब है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि भाई ये गाना जो है ये कैफ भोपाली का लिखा गाना है और ये सही जवाब है। कैफ भोपाली एक बहुत ही नामी शायर, अगर आप मुशायरों के शौकीन रहे हैं तो वो ये गजल जो है बहुत तरन्नुम में सुनाया करते थे। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, और तिरछे तिरछे तीर नजर के लगते हैं, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है, और आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक समाना लगता है। ये कैफ भोपाली बहुत ही मशहूर वयोवृद्ध शायर भोपाल के, और उन्होंने ये गाना लिखा था, बहुत ही मशहूर गाना है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट से एक गुजराती कमेंट है जिसे मैं ट्रांसलेट करके पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो मुझे मिल गया। वो जिस तरह से लिखा है, मैं अगर ये लिपि पढ़ने की कोशिश करूं तो लिख रहे हैं कि मुझे तो उदास गाने बहुत ज्यादा पसंद हैं, आए तुम याद मुझे जब जब बहार आई, इस तरह के गाने पसंद हैं। देखिए मैंने गुजराती लिपि भी पढ़ ली। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आज की तेज प्रश्नावली जो है और दिलकश गाने हैं, शुक्रिया। और इसके अलावा चिलमन का अंदाज, आनंद बख्शी ने भी चिलमन पर एक गाना लिखा है, सही पहचाना है आपने, उस गाने की बात बाद में करेंगे। इसके अलावा मन्ना डे का भी एक चिलमन वाला गाना है, अगर आपको याद हो तो जिक्र कीजिएगा। यहाँ पर एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि धुएं की लकीर का एक गाना लोकप्रिय हुआ था, तेरी झील सी गहरी आंखों में कुछ देखा है। एक श्रोता है जिन्हें मुझे करेक्ट किया है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में नहीं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हम पुराने जमाने के लोग हो गए हैं, उस जमाने में राजनांदगांव मध्य प्रदेश में हुआ करता था, आपने सुधार किया, शुक्रिया राजनांदगांव छत्तीसगढ़। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता है, जरा सामने तो चलिए, उनके अकेलेपन का गाना है। इसके अलावा कुछ और श्रोता है जिन्हें उदास गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें से कोशिश ये कर रहा हूं कि देखिए, काली घटा, गृहस्थी, दिल अपना और प्रीत पराई जैसी फिल्में किशोर साहू ने निर्देशित की। दिल अपना और प्रीत पराई, मुझे क्यों लग रहा है कि दिल अपना और प्रीत पराई किशोर साहू की निर्देशित, यस, दिल अपना और प्रीत पराई किशोर साहू की निर्देशित फिल्म है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा शुक्रिया इन तमाम जवाबों के लिए। अगला गाना आ रहा है, और ये बताइएगा कि फिल्म प्यासा आपने कितनी बार देखी है।

एक श्रोता लिखती है कि प्यासा फिल्म बार बार देखी है फिर भी मन में प्यास रह जाती है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग श्रोता हैं। एक श्रोता ये है जो कहते हैं कि सबसे दिलचस्प लगेगा जब आखिर में आप कहेंगे अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। आपको कैसे अंदाजा लगा कि आखिर में यही गाना बजेगा, क्योंकि यही गाना तो हमने रख छोड़ा है आखिर में बजाने के लिए। एक दौर था जब दूरदर्शन पर रविवार को फिल्म आया करती थी और रविवार को जो फिल्म आती थी उसका बहुत इंतजार रहता था। उस दौर में देखी गई जो सबसे यादगार फिल्म थी आपकी वो कौन सी थी ये बताइएगा। दूरदर्शन के जमाने में जो रविवार की सबसे यादगार फिल्म होती थी, एक झलक इस गाने की बजा रहे हैं क्योंकि इस गाने का एक अंश आज की इबारत में था और उसके बाद आपसे विदाई लेने वाला वो गाना जिसके बारे में अभी अभी हमने कमेंट पढ़ा।

0: ये गाना जैसे रोमांच पैदा कर देता है। शैलेंद्र के ये बोल, सली चौधरी के तर्स, बेमिसाल गाना है। इस गाने को काटते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसे शामिल करने का मन था। और अब वो गाना जो आप सभी से ये कहने की इजाजत देता है कि अब हम चलते हैं।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत ने सोमालिया के साथ 2 विदेशी ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मुद्दा उठाया। इसमें 22 भारतीय नाविक सवार थे। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। कनाडा ने भी समान स्तर की जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद आज सेमीफाइनल में चीन की लियु शेंगशू और टैन निंग से खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वहीं सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए भी विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान PLI योजना से की।
2: जहाँ पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। PLI स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़

0: रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है, 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है, 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
0: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ये समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज MT Cebu 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज MV 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
2: 2 ships which are foreign flagged. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
3: We are in touch with the authorities that are concerned in this.
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमेरिकी टैरिफ से कनाडा के अमेरिका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वॉशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले 2 छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
4: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया जिससे टरबाइन ओवर स्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल

0: रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर आज रामगढ़ पतरातू मार्ग जाम कर दिया। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलोल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में दो कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
2: मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है, लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14,00,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14,00,000 लोग इससे प्रभावित है। हालांकि मुख्य नदियां का जलस्तर घट रहा है, लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर हैं और उन्होंने पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बास बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो EPF के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
4: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फैन और झांगशू जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई है। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थी जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
1: वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टल फेन में भारत का सामना शाम 7:30 बजे से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिलामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार

0: बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे।

मजू सुल्तानपुरी के बोलते हैं एसडी बर्मन की तर्ज। अच्छा, उस लिखी आवाज थी, फिल्म का नाम था सुजाता।

0: दिल ने कहा
1: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
2: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
2: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
0: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
2: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो रुकने ही नहीं आता।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
2: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
0: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
1: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
0: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
1: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ

बताने के लिए आप सभी की फरमाइश आई है। छत्तीसगढ़ बेमित्रा जिला से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, सुनील कुमार, वीरेंद्र सारथी, रुद्र कुमार और व्रिज कांत सारथी, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहू, रंजीत कौर मन्नत, गुरकीरत और गुरुशब्द सिंह राहुल, आदर्श रेडियो श्रोता संघ कन्हरिया बाजार पूर्णिया से दिलीप कुमार सेंचुरी, बिमला रानी सेंचुरी, शिम्पी रानी साह, सुरेश लाल साह और अमित राजा। और ये फरमाइश आई है कर्नाटक बेंगलोर से मेनका नतारा की। इसके अलावा जी यही एक नाम है और अनीता, प्रीति, येसु और निसार की फरमाइश है। और कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष शर्मा, बिट्टू जैन और दीपक जैन की लुधियाना पंजाब से फरमाइश हमें मिली है। इसके अलावा एक और चिट्ठी, और वो चिट्ठी भेजी है पूरे बाकड़े परिवार ने, जिसमें पवन कुमार, ज्योतिताई, संतोष राव बाकड़े शामिल हैं अकोला से। और ये है आपकी पसंद का गाना, फिल्म का नाम है अनजाना।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना? बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। मंचाय गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगली फरमाइश है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनकर, रेणु जीनकर, अजय प्रिंस और कुलदीप की, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, स्वीटी बेबी प्रियांशी, कस्बा हरदुआ गंज अलीगढ़ से मुन्ना खान अंसारी, शहीद अहमद, नफीस अंसारी, अनाविया अजान और अयान, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, रहीम, मुन्ना, महीन, फातिमा, अदीब, दानिश, आसिफ, जोहरान शेख, मालवा मिल कंपाउंड इंदौर से प्रमिंद्र कुशवाहा, कैलाश कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, मंजू चौहान और कामिनी चौहान। कलाकार फिल्म का गाना इंदीवर के बोल कल्याण जी आनंद जी की तर्ज, किशोर कुमार की आवाज़।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सभी की फरमाइश है, महादेव डोंगरे राधा नगरी कोल्हापुर से ये श्रोता संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके साथी घंटाघर चौक खंडवा के श्रोता हैं। काटोल नागपुर से सुरेश मलमकार, श्रीमती रजनी मलमकार, ये फरमाइश बीड़ शहर से रंजीत कुमार, नामदेव थोरात, रितेश, आकाश, रंजना, रश्मि और गबरू पहलवान की, महेंद्र सटकरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद वरुण जौल का से और वर्धा से दिलीप खैर का, शोभा रविंद्र सारिका और स्वरा।

नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक जैसी करनी वैसी भरनी। लेखक रोमी शिराज, निर्देशक मुद्रा राक्षस।

0: सुभद्रा सुभद्रा,
1: ये मकान मालिक तो कुछ करता नहीं, इतने दिन से कहा जा रहा है, छत तक ठीक नहीं करवाई। अब देखो, ये देखो, जगह जगह से टपक रही है।
0: अरे मैं कहता हूँ, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? शाम को जो चाट खाई थी, लगता है बहुत खराब थी। खाकर खाकर और तबीयत खराब हो गई।
1: तुम्हारी तो तबीयत ही खराब रहती है।
0: अरे ऊपर कुछ ऐसी आवाज हुई जैसे कोई कूदा हो।
1: अरे तेज हवा की वजह से कुछ गिर गया होगा।
0: हा?
1: तुम भी बस बुढ़ापे में लगता है ज्यादा सुनने लगे हो।
0: क्या क्या क्या, अरे अरे अरे जी जी जी जी, क्या बात हुई है? क्या बात हुई है? मैं बूढ़ा कब से हो गया जी है? कब बूढ़ा हुआ मैं? कौन आ गया? कौन?
2: जीवननाथ जी है, रहते हैं क्या?
3: अरे भाई दरवाजा खोलिए।
0: कौन है? देखो तो जरा,
2: कौन है?
0: अरे पुलिस?
2: जीवन लाल जी आप ही हैं?
3: हाँ यही है जीवन लाल जी। अरे बाबा, बहुत गंडगोल हो गया है। तुम्हारा जो फादर था ना,
0: हाँ?
3: वो हमारा पागल खाने में सुसाइड कर लिया।
0: क्या?
3: ये इंस्पेक्टर साहब बोलता है उसका लाश को आइडेंटिफाई करना है। हाँ? आप ही चलना है।
0: अच्छा अच्छा, चलता हूँ, जरा कपड़े पहन लूं, अभी आया।
1: बात क्या है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं?
0: पागल खाने से इंस्पेक्टर साहब खबर लाए हैं।
1: पागल खाने से? क्या?
0: पिताजी ने आत्महत्या कर ली है।
1: आत्महत्या?
0: हाँ।
1: जब तक जिंदा थे तब तक तो हमारे लिए मुसीबत थी ही, मर कर भी चैन नहीं लेने देंगे।
0: अरे ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। लाओ देखो मेरा छाता कहाँ रखा है, लाओ जरा।
1: अरे अरे, इस आंधी तूफान में कहाँ निकले जा रहे हो? कल सुबह चले जाना।
0: अरे बेकार की बातें मत करो, अभी जाना होगा मुझे, इंस्पेक्टर साहब लेने आए हैं मुझे।
1: लो अब उनकी वजह से द्वारे पुलिस आकर भी खड़ी हो गई।
0: बकबक बंद करो, देखो भाई छाता कहाँ रखा है, और सुनो कुछ पैसे भी दे देना। मेरा कुर्ता कहाँ रख छोड़ा है?
1: कुर्सी के पीछे टंगा तो है।
0: हाँ,
1: ये लीजिए।
0: हाँ, अच्छा सुनो, मैं चलता हूँ, वो गुड्डू के हाथ अपने देवर को भी खबर भिजवा देना।

0: आइए, इस तरफ से आइए।
1: जी। वेरी सैड, वेरी सैड। वो कल दोपहर से ही गायब था, आज पागलखाना का पीछा का कुआं से उनका

0: तलाश को निकला गया। शायद वो कुआं में कूद कर ही उन्होंने जान दे दिया। ओ ना अंदर है। ओरे बाबा तुम्हारा फादर, माय गॉड, अजीब मैन था, माय गॉड, कल से गायब, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, माय गॉड, पता नहीं कब कुआं में कूद गया।
1: कुएं में कूद गया? अरे डॉक्टर साहब, आपको अपने रोगियों का ख्याल तो रखना चाहिए।
0: ओरे बाबा की रकम बात करता है तुम, हा? हम सभी का पुआ ख्याल रखता है, खाना कपड़ा।
1: हाँ सब जानता हूँ, खाना कपड़ा। अरे इस तरह का खाना तो शायद जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे, और कपड़ा शायद ही किसी मानसिक रोगी को कपड़े पहने देखा हो हमने।
0: माय गॉड, जब पागल लोग अपना कपड़ा फाड़ देगा तो कोई कितना बार पहनाएगा।
1: अरे डॉक्टर साहब, आपके पास तो हर चीज का जवाब हाजिर है।
0: जीवनलाल बाबू, ये सब बात तो होता रहेगा, अब पहले आप डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब आप चलिए, हम कल सुबह इनको थाने भेज देगा।
2: अच्छा।
3: कितनी बदबू है यहाँ।
0: देखिए इनको पहचानता है?
3: जी जी, यही है, यही मेरे पिताजी हैं। इनका इनका ये शरीर इतना फूल कैसे गया?
0: तुम्हारा फादर, माय गॉड, ऐसा पागल तो हमने अपना लाइफ में कभी नहीं देखा। कभी बोलता हम पागल नहीं, कभी बोलता हम पागल है। कई बार पांच पांच दिन खाना नहीं खाता, और कभी जितना दो बोलता और लाओ, नहीं देने से सब कुछ तो तफोटा। ओ ओ देखो, ओ खिड़की का ग्लास सब उसी ने तोड़ा, माना करा तो हम पर अंडा खींच कर मारा। He was a different kind of a lunatic.
4: मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं पागल नहीं हूँ। दासा, दासा, दासा, दासा, मेरे बेटा को कैसा कर दिए? उन्होंने मुझे हवन कराया है, मैं पागल नहीं हूँ।
0: ओए बाबा, ये यहाँ कहाँ से आ गया? ए, तुम उधर चलो, उधर चलो तुम।
4: मैं पागल
0: नहीं हूँ। इधर आ जाओ, तुम कम बोलता है।
4: पागल नहीं हूँ।
0: चलो बाहर जाओ।
3: ये कौन है?
0: पागल है, इसका लड़का लोग छोड़ गया था।
3: लड़का लोग छोड़ गया था?
0: हाँ।
3: लेकिन लेकिन देखने से तो पागल नहीं लगता।
0: हाँ नहीं लगता, पर हाय ठीक आपका फादर की तरह तो नहीं लगता, पर हाय।
3: लेकिन लेकिन मेरे पिताजी तो, मेरे पिताजी तो पागल थे ना, वो तो पागल थे।
4: मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरे बेटे को पकड़ो, पकड़ो, उन्होंने बंधा है मुझे।
0: अब आप घर जाइए, समझा? बारिश भी थम गया है ना, और कल सुबह थाने में पहुंच जाइएगा। हाँ
3: जी, खुश बाबू, खुश बाबू, आप ऐसा करिए, आप जाइए, मैं थोड़ी देर यही पिताजी के पास बैठूंगा।
0: अरे बाबा, यहाँ बैठेगा? ठीक है, ठीक है, तो तुम बैठो, हम फिर जाता है। हम जाता है।
3: पिताजी, ये आपने क्या कर डाला, क्या कर डाला आपने पिताजी?

0: पिताजी पिताजी ये आपने क्या कर डाला?
1: क्यों, क्या हुआ?
0: इतनी मुश्किल से प्रॉपर्टी डीलर ने दो लोगों को राजी किया था, वो आए और आपने उनसे बात तक नहीं की।
2: मुझे नहीं बेचना है अपना मकान। जानते हो कितनी यादें जुड़ी है इस घर से।
0: 40,000 में खरीदे इस टूटे फूटे मकान के 15 लाख रुपए देने को तैयार हैं होटल वाले।
2: 50 लाख भी अगर दे तब भी नहीं बेचूंगा। और फिर इस उम्र में 15 लाख लेकर करूंगा क्या मैं?
0: पिताजी मेरा नहीं तो कम से कम अपने पोतों का तो ख्याल कीजिए आप।
2: उनका ख्याल तुम करो जीवन, वो तुम्हारे बेटे हैं।
0: पिताजी आप कुछ समझिए तो सही।
2: क्या समझूं,

0: क्या समझूं मैं?
1: 15 लाख में इस मकान को बेचकर किराए का मकान ले लीजिए, कुछ पैसा बैंक में डाल दीजिए
0: और क्या?
1: और फिर पिताजी मुझे भी तो नए सिरे से अपना बिजनेस जमाना है, कुछ पैसा मुझे भी दे दीजिएगा, भले ही उधार दे दीजिए।
0: अपने रिटायरमेंट के पैसे से 30-30 हजार मैंने दिए हैं तुम दोनों भाइयों को।
1: 30 हजार? अरे 30 हजार में तो पिताजी बाहर एक छींका भी नहीं आता है।
0: होश में रह के बात करो जीवन।
1: होश में तो पिताजी आप नहीं है, मैं चाहूं तो कानूनन अपना हिस्सा ले सकता हूं आपसे।
0: क्या? तो फिर कान खोल कर सुन लो जीवन, मैं ये मकान नहीं बेचूंगा। और यही कह देना छोटे से भी, ज्यादा बहस की तो सारा मकान किसी संस्था को दान कर दूंगा।
1: अरे अरे अरे अरे आप तो काफी लंबी सोच के बैठे हैं पिताजी, मैं भी देखता हूं आपके सपने कैसे पूरे होते हैं।
0: क्या मतलब? क्या चाहते हो तुम?
1: आग लगाना चाहता हूं इस घर को, यही चाहते ना? तो लीजिए, ये रही माचिस।
0: जीवन पागल हो गया तुम?
1: हाँ हाँ
0: बिल्कुल पागल हो
1: गया हूं मैं पागल। मकान बेचकर दो मुझे पैसे, वरना रोक कर तुम अभी इस कबाब खाने को। मैं
0: बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ छोड़ माचिस को।
1: नहीं
0: मैं कहता हूँ माचिस मुझे
1: नहीं छोड़ूंगा,
0: छोड़ दे माचिस,
1: नहीं छोड़ूंगा,
0: जीवन माचिस
1: और बना दूंगा इस घर को। जो चीज मेरी नहीं है वो फिर किसी की भी नहीं हो सकती।
0: नीच बेहूदे, बाप से हाथापाई करता है, छोड़ माचिस मैं कहता हूँ।
1: पकड़ो, लो पकड़ो ये माचिस, काम आएगी तुम्हारे कभी।
0: हे भगवान, इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था मैंने तुम दोनों को।
1: अरे इस बात की क्यों धौस मारते हैं आप? कौन बाप नहीं पढ़ाता लिखाता अपनी औलादों को?
0: इस तरह की औलाद से तो बे औलाद ही होना ठीक था। पता नहीं मेरे किस जन्म का पाप हो तुम दोनों भाई।
1: क्या पता कौन किसका पाप है। अरे मेरा मतलब है, अंजनी को देखिए, नई फैक्ट्री के लिए 7 लाख रुपया दिया है उसके बाप ने उसे।
0: अंजनी, अंजनी जैसे अगर तुम होते ना जीवन, तो 7 क्या 70 लाख का इंतजाम करता मैं तुम्हारे लिए।
1: पता नहीं क्या जिद है आपकी। देखिए पिताजी, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये मकान आपको बेचना है या नहीं?
0: एक ही जवाब तुम कितनी बार सुनोगे जीवन?
1: ठीक है, तो मैं भी आपकी जिद तुड़वा करके ही दम लूंगा।
0: हद से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो जीवन, एक कूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तुमको। और ये मकान भी किसी संस्था को दान कर दूंगा। कान खोल कर सुन लो, और ना सुन सको तो निकल जाओ इस घर से।
2: अरे पिताजी क्या हो गया?
0: अच्छा हुआ तुम भी आ गए। अपने भाई के साथ बैठकर फैसला कर लो, अगर इस घर में रहना है तो शांति से रहो, वरना निकल जाओ तुम भी। और ये भी, मैं शाम तक वापस आऊंगा।
2: अरे क्या बात हो गई भैया?
1: अरे वही उनकी पुरानी जिद, घर नहीं बेचेंगे।
2: ओ, तो क्या बात ज्यादा बढ़ गई थी?
1: अरे ज्यादा, ये तो कहो संपत मैं ही अपने पर काबू किए था, वरना आज तो
2: इस तरह काम नहीं चलेगा भैया, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक दुकान खरीदने के लिए मेरी भी बात चल रही है विवेक नगर में, मेन मार्केट में ही दुकान है, और 3 लाख रुपया पगड़ी मांग रहा है। अगर ये मकान बिक जाए तो मजा आ जाए। वो होटल वाले आए थे?
1: अरे आए थे, 15 लाख रुपए दे रहे थे।
0: 15 लाख?
1: फिर जी बात ही नहीं की इस पुड़ो ब, ब, ब, तुम्हारे बाप ने।
2: आखिर क्यों?
1: नहीं बेचेंगे, अरे हम सबकी कब्र जो बननी है यहाँ।
2: 15 लाख? तब तो मैं वो कोनी वाली बड़ी दुकान भी ले सकता हूँ, 4.5 लाख रुपए पगड़ी है उसकी। ओफो, इस समय पता नहीं कौन आ गया।
3: कौन है भाई?
4: अरे भाई मैं हूँ अवधेश।
2: पता नहीं कहाँ से हमारा ये।
1: सुनो, पैसे वैसे उधार मांगे तो मना कर देना।
2: अरे पहले पिछला उधार चुकाए तो।
4: अरे क्या हो रहा दोस्तों, बड़ा मुंह लटकाए बैठे हो।
2: भाभी जी कहाँ?
1: भाभी तुम्हारी बाजार तक गई है।
4: बड़े दुखी नजर आ रहे हो,
2: क्या हुआ?
1: अब क्या बताएं यार अवधेश, हम दोनों को पैसे की जरूरत है। पिताजी से मकान बेचने को जब भी कहते हैं मानते ही नहीं। बस आज इसी बात को लेकर काफी बकझक भी हो गई। आज तो उन्होंने हम दोनों को घर से निकल जाने की भी धमकी दी है। समझ में नहीं आता यार क्या करें। धमका रहे हैं कि ये मकान किसी संस्था को दान कर देंगे।
4: लो यार पान खाओ। तब तो ऐसा करो, एक संस्था तुम लोग भी खोल डालो।
2: देखो आदेश, मजाक मत करो।
1: अच्छा एक बात बताओ, पिताजी के रहते क्या हम लोग

0: इंसान को बेच सकते हैं?
1: जब तक वो जिंदा है तब तक तो नहीं, मेरा मतलब है उनके रहते।
2: अरे यार, उन्हें अभी क्या होने वाला है, इतनी दूर की तो फिर बेकार ही की सोचना।
3: बताओ भला, इतना पैसा पास में है फिर भी जैसे नहीं है।
2: अरे जी तो करता है, जबरदस्ती उनसे मकान अपने नाम लिखवा कर बेच डाला।
1: अगर इस तरीके के मूर्खताएं सोचनी है तो मैं चलता हूँ यहाँ।
3: अरे भाई तुम तो भाई तुम ही कुछ अकल की बात बोलो ना।
1: भाई तरीका तो मेरी खुराफाती खोपड़ी में है, पर जरा मुश्किल है।
3: असंभव तो नहीं है?
1: कदापि नहीं बालकों, कदापि नहीं। वो नवजोत चिकित्सा केंद्र का नाम सुना?
3: वो नवजोत चिकित्सक, अच्छा अच्छा वो पागलों वाला अस्पताल, अरे वहाँ जहाँ वो दो तीन बार छापा भी पड़ा था।
1: और उसका आर्डन तो सरकारी धन दुरुपयोग में पिछले साल गिरफ्तार होते होते बचा था, तो ठीक है ना?
3: ठीक, मगर ये पागल खाने का क्या चक्कर है उदेश बाबू?
1: देखो भाई, अगर तुम्हारे पिता को पागल करार करके इस पागल खाने में बंद करवा दिया जाए।
2: अब क्या बच्चों जैसी बातें करते हो यार, एक अच्छे खासे आदमी को पागल खाने में भर्ती कैसे करवा सकते?
1: एक आधे पागल को तो भर्ती करवाया ही जा सकता है ना।
3: यार क्या पहेलियां बुझा रहे हो, सीधी तरह ये बताओ ना कि कैसे संभव होगा।
1: देखो, अपने पिता को रोज थोड़ा थोड़ा वो चूर्ण देना जो मैं बताऊंगा।
2: खा चुके वो ये चूर्ण?
1: अरे खाना तो खाएंगे, बस उसी में चुटकी भर मिला कर दे देना, मगर खिलाना जरा प्यार से। अब फिर चमत्कार देखना, धीमे धीमे वो शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कमजोर हो जाएंगे।
3: क्या?
1: उसके बाद ही उन्हें पागल खाने में भर्ती करा दिया जाएगा।
3: लेकिन अवधेश, पागल खाने में तो काफी तकलीफ रहेगी उन्हें।
2: और क्या?
1: अरे हर महीने कुछ पैसे मुझे दे दिया करना, मैं उन्हें दे आया करूंगा, कोई कष्ट नहीं होने पाएगा उन्हें।
3: लेकिन मकान तो फिर भी पिताजी के ही नाम रहेगा ना।
2: और क्या,
1: एक दो कागजों में उनका अंगूठा लगवा लेंगे, नहीं काम बना तो दो तीन जाली कागज मैं बनवा दूंगा।
3: मगर नवजोत वाले उन्हें पागल कैसे मानेंगे?
1: तुम दोनों यार आते तो बेवकूफों की श्रेणी में ही हो। मैं तुम लोगों को एक बात पहले से साफ कर दूं कि ये फार्मूला अंधेरे में चलाएगा तीर जैसा है, और ये तीर निशाने पर लगेगा या नहीं इसकी 50-50% उम्मीद ही रखो। हाँ, वैसे तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नवजोत में तमाम लोग छुटकारा पाने के लिए अपने पिता से लेकर दूसरी शादी के चक्कर में अपनी पत्नी तक को भर्ती करवा चुके हैं।
3: मगर अवधेश, इसकी जांच भी तो कभी हो सकती है।
1: एक अच्छा भला आदमी साल भर इस कैद खाने में रह ले तो पागल तो हो ही जाएगा। अब वैसे तुम लोग चाहो तो अपने पिता के मरने का इंतजार कर लो, 20 साल 25 साल या।
2: अरे नहीं नहीं भाई, अब तो लगता है 20-25 साल तक भीख मांग करके ही गुजारा करना ही पड़ेगा।
3: मेरे ख्याल से अवधेश की बात ठीक ही है भैया, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना तो पड़ेगा ना।
1: पिताजी जैसी पुरानी चीज खो कर अफसोस ही क्या होगा।
2: पिताजी, क्या कर डाला आपने, क्या किया पिताजी?
4: अरे झूललाल बाबू, अभी गया नहीं आप, यहीं बैठा है?
2: जाता हूँ डॉक्टर साहब, जाता हूँ।
5: बड़ी देर कर दी आपने आने में, संपत भैया 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं आपका।
2: संपत,
6: नमस्ते भैया।
2: नमस्ते नमस्ते, बड़े कमजोर नजर आ रहे हो।
6: अब हम बूढ़े हो गए भैया, फिर पास ऐसा है ही क्या जो खुश रखे, स्वस्थ रखे?
2: पिताजी के बारे में पता चला तुम्हें?
6: पता चला, ये तो होना ही था एक दिन।
2: एक नई मुसीबत भी तो खड़ी हो गई
6: जी।
2: पुलिस सारी बातों की जांच करेगी, तुमको तो पता ही है, उनको पागल सिद्ध करने वाले कागज भी तो जाली ही थे। अवधेश ने जिससे बनवाए थे वो डॉक्टर ही कहाँ था, शायद कोई कंपाउंडर वगैरह था।
6: यानी एक और मुसीबत।
2: हाँ,

0: और मतलब
1: आपसे क्या छुपाना भैया, मेरे मेरे लड़कों ने मुझे घर से जाने के लिए कह दिया।
0: अरे अरे लेकिन लेकिन संपत, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ?
1: क्या बताऊं, मैं आपसे सब छुपाए रहा भैया। मैंने अपने लड़कों पर भरोसा करके उन्हें सारा पैसा दे दिया, दुकान उनके नाम कर दिया, और पैसा पाते उनकी आंखें पलट गई। रोज रोज मेरा अपमान होता है, घर से जाने के लिए कहा जाता है, जी तो करता है आत्महत्या कर लूं।
0: लेकिन लेकिन पिताजी वाला मकान बेचने पर तो 7.5 लाख रुपए मिले थे तुम्हें।
1: हाँ, मिले थे भैया, ज्यादा पैसा होने पर खर्च भी कुछ ज्यादा होता है। फिर पैसा पिताजी की मेहनत का था, हमारी मेहनत का नहीं था। जो ज्यादा खर्च होने पर दर्द होता,

0: पिताजी वाला मकान बेचने पर तो 7.5 लाख रुपए मिले थे तुम्हें।
1: हाँ, मिले थे भैया। ज्यादा पैसा होने पर खर्च भी कुछ ज्यादा होता है। फिर पैसा पिताजी की मेहनत का था, हमारी मेहनत का नहीं था। जो ज्यादा खर्च होने पर दर्द होता।
0: सच कहते हो संपत, वो रुपए तो ऐसा लगा मानो सड़क पर पड़े मिले हो। पिताजी की बात और थी, हर काम करने से पहले 20 बार सोचते थे। अब लगता है मकान न बेचने का उनका फैसला भी ठीक ही था। अब देखो किराए के मकान में आए दिन मकान मालिक किराया बढ़ाता रहता है, न बढ़ाओ तो निकालने की धमकी ऊपर से।
1: अच्छा भैया, पुलिस जांच से अगर सारी बातों का खुलासा हो गया तो?
0: अरे नहीं, तब तो बुढ़ापा ही खराब होगा और जग हंसाई ऊपर से होगी।
1: खैर, जो भी हो, मेरे से तो बेहतर स्थिति है आपकी।
0: हाँ ठीक कहते हो, फिलहाल तो बेहतर ही है। लड़की की शादी कर दी, लड़का है बस जरा चुप रहता है, घर आएगा आते ही अपने कमरे में घुस जाएगा, न किसी से बोलना न किसी से चालना।
1: अच्छा भैया, चलता हूँ। वो फिर आऊँगा।
0: अच्छा,
1: वो भैया, वो
0: कुछ कहना चाहते हो?
1: भैया, पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए मेरा मेरा मतलब है कि
0: अरे
1: वो।
0: नहीं, चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम कर दूंगा। और कुछ?
1: वो कहते तो ठीक नहीं लगता भैया। वैसे अगर मेरे लड़कों ने मुझे निकाल दिया तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ
2: सुनो
1: आकर।
2: जी, बात सुनो जरा।
0: हाँ, ठीक है भाई, संपत्त तुम्हारे रहने पर तो हमें कोई एतराज नहीं है, पर तुम तो जानते हो एक ही कमरा फालतू है और मेहमान है कि आते ही रहते हैं। अब अपनी सुविधा के लिए तुम मुझे तो तकलीफ में डालना पसंद नहीं करोगे ना?
1: क्या? कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा, चलता हूँ। नमस्ते
0: अच्छा
1: भैया।
0: अच्छा नमस्ते।
1: नमस्ते भाभी।
0: मुसीबत पर मुसीबत, अपने बच्चों से बनाकर रखेगा नहीं और यहां टिकने के लिए हाथ फैलाए हैं। एक तो पिताजी ने आत्महत्या करके और मुसीबत खड़ी कर दी, अगर जांच हुई तो बचना भी मुश्किल हो जाएगा।
2: अरे क्या अशुभ बोल रहे हो?
0: अरे ठीक ही कह रहा हूं। ये छड़ी किसकी रखी है?
2: अवधेश की होगी, भूल गया होगा।
0: अवधेश? अवधेश कब आया था यहां?
2: कल जब आप काम पर गए थे, वो तो आता ही तब है जब आप घर पर ना हो।
0: अरे लेकिन लेकिन वो आता क्यों है यहां?
2: क्या पता, अपने बेटे अनिल से पूछिए ना, उसी से मिलता है। शायद कोई बिजनेस करना चाहता है अनिल।
0: बिजनेस? बिजनेस क्या मतलब? बिजनेस और अवधेश के साथ? अरे पता है, सांप है वो, सांप सब कुछ बेच कर खा जाएगा।
2: क्यों, आपकी तो बहुत दोस्ती थी उससे, खाना पीना उठना बैठना।
0: अरे हाँ, जब थी तब थी। इसी बेवकूफ की बातों में आकर ही मैंने न जाने कितनी गलतियां कितने पाप कर डाले। जवानी के जोश में पता ही नहीं तक चला कि मैं पिताजी के साथ क्या सुलूक कर रहा हूं। उस समय तो बस इसी अवधेश और संपत ने मिलकर पिताजी के खिलाफ भड़की आग में घी डाला था।
2: उन्होंने भड़काया और आप भड़क गए।
0: अच्छा, ठीक है, अब तुम भी मुझे ही दोष दे लो। नोच खाओ मुझे, नोच खाओ। समय पिताजी को पागल खाने भेजने से तुम भी तो मना कर सकती थी मुझे।
2: हाँ, जरूर। उस समय लाखों रुपए के आगे कुछ सूझ रहा था आपको? उस समय तो खाने में जाने किस किस चीज का चूरन मिलाकर खिलवाते थे आप।
0: क्या बोली, क्या बोली, क्या बोली? बोलो बोलो, जोर से बोलो, चीखो चीखो ताकि मोहल्ले वाले भी तो सुन ले।
3: अरे जी, क्या हुआ, क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हैं आप?
0: ये एक बात बताओ अनिल, ये अवधेश क्यों आता है यहाँ? क्या करना चाहते हो तुम उसके साथ? बिजनेस? बिजनेस करना चाहते हो? पता है बेचकर

0: आ जाएगा तुम्हें और तुम्हारे कपड़े भी।
1: मगर वो तो आपके दोस्त हैं।
0: कोई दोस्त वोस्त नहीं है, कोई दोस्त वोस्त नहीं है वो मेरा, समझे?
1: मगर क्या बिगाड़ा आप चाचा ने?
0: उसकी उसकी वजह से ही, उसकी वजह से ही तुम्हारे बाबा ने आत्महत्या कर ली।
1: बाबा ने? वो जो पागलखाने में बंद थे?
0: हाँ हाँ वही।
1: बाबा ने आत्महत्या की?
0: क्या क्या बिजनेस समझा रहा था तुम्हें? क्या बिजनेस समझा रहा था वो तुम्हें?
2: बेटे, तुम्हारे बाबा ने अवधेश की वजह से नहीं, इनकी वजह से आत्महत्या की है। इन्होंने
0: चुप कर, चुप कर, मैं कहता हूँ चुप कर।
1: पिताजी, क्या हो गया है आपको? माँ पर क्यों बिगड़ रहे हैं? बिजनेस में बुराई ही क्या है? आखिर मुझे अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है। महज 3 लाख से मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा।
0: अच्छा अच्छा, और ये 3 लाख रुपए तुझे देगा कौन?
1: अवधेश चाचा ने कहा है कि रुपया आपके पास है, आखिर आपने भी तो बाबा से पैसा लिया होगा।
0: मैंने मैंने क्या मतलब? और क्या बताया अवधेश ने तुझे? और क्या क्या बताया तुझे? कौन खोल कर सुन लो, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हें, समझे? एक कौड़ी भी नहीं दूंगा।
1: समझिए आप, आप अगर मुझे पैसे नहीं देंगे तो कानूनन अपना हक ले लूंगा मैं आपसे।
0: क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा तुमने? कानूनन, कानूनन अपना हक लोगे? तो जाओ, जाओ सड़क पर और मांगो कानून से अपना हक।
1: नहीं जाऊंगा, देखता हूं कौन निकालता है मुझे यहां से।
0: और ये हाथ में क्या है तुम्हारे? ये हाथ में क्या है तुम्हारे?
1: हाथ में? आपसे क्या मतलब? आप तो घर से निकाल रहे थे मुझे, वैसे ये आप ही के खाने के लिए लाया हूं मैं।
0: खाने के लिए? मेरे खाने के लिए? हो तो ये हो रहा है इस घर में, ये हो रहा है। अरे खुले आम क्यों नहीं खिला देते जहर? अरे गला घोट कर क्यों नहीं मार देते मुझे? खिलाओ खिलाओ खिलाओ जहर मुझे, खिलाओ।
1: ये खिला? क्या अनशन बक रहे हैं आप? कौन क्या खिला रहा है आपको?
0: अरे मैं समझ गया, मैं सब समझ गया हूँ तुम लोगों की चाल, मैं सब समझ गया हूँ। कौन खोल कर सुन लो, आज से अपने लिए खाना मैं खुद बनाऊंगा और तुम माँ बेटे को, तुम माँ बेटे को निकाल करके ही दम लूंगा। अवधेश के साथ मिलकर मेरी दौलत हड़पना चाहते हो, मुझे पागल खाने में भर्ती कराना चाहते हो? अरे अरे तुम भक्तो, शहर खिलाकर आधा तो मार ही दिया है मुझे।
2: ये क्या कह रहे हैं आप?
3: अरे भाई क्या हो रहा है?
1: देखिए ना चाचा, इनका तो लगता है दिमाग चल गया है, पागल हो गए हैं लगता।
0: अरे मैं पागल? अरे मैं नहीं हूँ पागल, तुम सब हो पागल, नहीं हूँ मैं पागल। तुम अगर मुझे पागल खाने भेजोगे तो नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा वहां।
3: हाँ हाँ, आपकी बात भी सही हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन सच तो बताएगा डॉक्टर ही। हा? क्यों अनिल भतीजे?
0: क्या कहा? डॉक्टर, डॉक्टर? नहीं नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं।

जैसी करनी वैसी भरनी। अभी आपने रोमी शिराज का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे मुद्रा राक्षस और ये नाटक आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति थी। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: आज के बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता आलोक गागड़ेकर से यूनुस खान की बातचीत।
1: बहुत बहुत स्वागत आलोक गागड़ेकर जी विविध भारती के स्टूडियो में।
2: जी जी जी नमस्कार, धन्यवाद।
1: आलोक जी, रेडियो से जो आपका जुड़ाव है वो जब हमारी स्टूडियो में आते आते बातचीत हो रही थी तो बहुत सारी बातें सामने आई, तो मुझे रेडियो से जुड़ी कुछ दिलचस्प घटनाएं बताइए जो आपके जीवन में घटित हुई हैं।
2: जी, यानी ये कह सकता हूं मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है बचपन से।
1: जी,
2: क्योंकि घर में तो टीवी भी था, कलरमैन टीवी था हमारे पास,

0: और सभी संसाधन थे, लेकिन मेरे नानी माँ का घर था जहां बिजली भी नहीं थी और वहां एक लकड़ी का रेडियो था।
1: वो किस जगह रहती थी?
0: वो हमारे अहमदाबाद में ही,
1: हाँ
0: अहमदाबाद हमारा जो एक मोहल्ला है, जो हमारा गांव है, छारा नगर गांव, तो वहां पर रहते थे। तो सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था और वही हमारा मॉर्निंग एक उठने का प्रण बनता था कि रेडियो शुरू हो गया, इसका मतलब सुबह हो गई है। अब रेडियो पे ये गाने चल रहे हैं, इसका मतलब दोपहर हो गई है। तो यानी कि जो रेडियो में भी बार बार कहा जाता है कि रेडियो विविध भारती, जीवन का संगीत, तो सच में वो जीवन का संगीत बचपन से ही जुड़ा था। तो मैं बच्चा था, यानी 11-12 साल का, और मुझे क्या समझ है गीतों की, लेकिन बावजूद उसके मुझे वो बीच बीच में आती हुई एंकरिंग, बीच बीच में आते हुए एड, फिल्म्स के जो जिंगल्स, और इन सबके साथ इतना जुड़ाव हो गया कि एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
1: ओहो,
0: मुझे लगा कि मैं नहीं, अभी के अभी रेडियो रिपेयर करो। और हमारे नानी माँ का आर्थिक परिस्थिति इतना अच्छा नहीं था कि वो तुरंत एक नया रेडियो ले आते।
1: हाँ
0: तो मैं एक 11 साल का लड़का रेडियो लेकर बाजार में घूम रहा है कि कोई इसे रिपेयर कर दे, क्योंकि इसकी वजह से मेरी दिनचर्या जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है। तो रेडियो से वो जुड़ाव था कि जैसे एक मित्र आपका साथ छोड़ दे तो कैसा फील होता है। तो
1: कितनी
0: वैसे
1: प्यारी बात है कि
0: जी
1: आप
0: जी
1: इतना
0: जी
1: ज्यादा जुड़े थे। तो फिर
0: जी
1: वो रेडियो सुधर पाया कि नहीं सुधर पाया?
0: वो रेडियो तो नहीं सुधर पाया, लेकिन इतना है कि नानी माँ और ये लोग इतना प्यार करते थे मुझसे कि उन्होंने फिर मुझे एक नया ट्रांजिस्टर रेडियो, जो उस वक्त मुझे अभी भी कीमत याद है कि 92 रुपीज में हमने खरीदा था, जो मेरे पास ही रहता था। और तब फिर धीरे धीरे समझ बनी, हम स्पोर्ट्स खेलते थे तो क्रिकेट, रेडियो के अंदर क्रिकेट सुनना, यानी कि वो स्टेडियम में जो आनंद आता है उससे भी ज्यादा आनंद आपको रेडियो पे सुनने का आता है, क्योंकि एक एक बॉल, एक एक बैट, एक एक खिलाड़ी की हरकत जो हमको बयां करते थे रेडियो पर, वो पूरा विजुअलाइजेशन जब सामने आया तो पता चला कि ये केवल मशीन का पुर्जा नहीं है, लेकिन ये तो एक ऐसा यंत्र है जो शायद मनुष्य के साथ बातें कर रहा है। यानी कि एक हमारा गिव एंड टेक होता था। ये फिर आगे चल के बातें हैं, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी जुड़ा तो वहां पर भी रेडियो सुनते थे हम, क्योंकि एक FM मिल ही जाता था कहीं पे भी, है ना। तो वहां पर भी ऐसे लगता था कि आज मैं दुखी हूं ये रेडियो को कैसे पता चल गया,
1: अरे वाह वाह वाह,
0: आज मेरी मेरे मित्र के साथ अनबन हुई ये रेडियो को कैसे पता चल गया, और
1: वाह।
0: उन्होंने आज वही गीत क्यों चला दिया कि दोस्त दोस्त ना रहा या प्यार प्यार ना रहा या इस तरीके की। तो जिंदगी के साथ आपको साहित्य, संगीत और अभिनय या मनोरंजन, इन सबको जोड़ने वाला अगर कोई यंत्र है इस सृष्टि पे तो वो रेडियो है। और पूरी पृथ्वी में मुझे लगता है कि हमारा देश का, भारत देश का जो विविध भारती और आकाशवाणी रेडियो है, ये विशिष्ट प्रकार का रेडियो है। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि मैं आज इस मंच पर बैठा हूं और आपके सामने प्रस्तुत हूं, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यानी मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है।
1: क्या बात है। तो ये आपका रेडियो से इतना ज्यादा जुड़ाव रहा,
0: जी
1: विविध
0: जी जी
1: भारती से इतना जुड़ाव रहा। बचपन में अभिनय की ओर रुझान कब हुआ था आपका?
0: अभिनय का ऐसा था कि स्कूल के दिनों में जब टीचर्स डे सेलिब्रेट होता था तो उसमें मुझे एक बार टीचर ने कहा कि आपको टीचर बनना है, क्योंकि
1: जी
0: उसमें हम देखते हैं कि क्या एटीट्यूड है, कितना डेवलपमेंट आया है। तो मेरे लिए यही था कि कौन सा विषय, तो सबसे सुंदर मजबूत टिकाऊ विषय था मेरे लिए हिंदी, कि इससे अच्छा विषय क्या हो सकता है। तो मैंने हिंदी विषय के लिए पाठ लिया कि मैं हिंदी विषय पढ़ाऊंगा, और मुझे अभी तक शायद याद है कि मैं मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी को लेकर बात करने वाला था जो हमारे कक्षा में थी। तो वहां टीचर्स डे में टीचर बनने का जो एक पहला अनुभव रहा, वो मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, यह तो अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर नुक्कड़ नाटक, जो हमारा एक अहम हिस्सा है थिएटर का, तो गुजरात में हम थोड़ा अवेयरनेस को लेकर नुक्कड़ नाटक करते थे,
1: जी,
0: कुछ गरीबों को समझाने के लिए, मजदूरों के लिए।
1: तो ये किसी समूह से जुड़ गए थे आप?
0: हाँ, हमारा एक थिएटर ग्रुप था जिसका नाम ही था बुधन थिएटर ग्रुप। तो बुधन एक विशिष्ट व्यक्ति था, तो उस बुधन के किरदार से हम बुधन जैसे और किरदारों के लिए कोई एक मैसेज तैयार करते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। तो नुक्कड़ नाटक से शुरुआत हुई और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक मेरी, यानी कि ये जर्नी चली, कि जिसमें मैं सिर्फ सीख रहा था, सीख रहा था, सीख रहा था, क्योंकि अभिनय को जितना सीखो उतना कम है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

0: हम बड़े बड़े एक्टर्स को जब मिलते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ नया मनन चिंतन कर रहे होते हैं कि भाई आज आपको क्या जरूरत है अभिनय के बारे में इतना सोचने की, आप जो कुछ बोलोगे वो ही पत्थर की लकीर बन जाएगा। लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि कितना सिंसियर वर्क है ये, कि नजर हटी की दुर्घटना घटी, एक अभिनय यानी कि 2 सवा 2 घंटे की फिल्म में जब आदमी एक्टिंग करता है तो उसको कितनी बारीकाई से काम करना पड़ता है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के बाद और बारीकाई से मैंने इस पर काम किया, ध्यान दिया, और फिर लगा कि अब जिंदगी अभिनय के सहारे गुजर सकती है जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, क्योंकि अपने आप में 11-15 हजार लोगों का एप्लीकेशन वहां उस वक्त गया था।
1: हमें
0: और
1: यही सोचा था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना इतना आसान नहीं रह गया है, तो आप किस बरस गए थे और कितना कड़ा मुकाबला था?
0: कड़ा मुकाबला तो बेशक था, और मैं 2003 में मैंने अप्लाई किया था, उससे पहले मैंने 2002 में अप्लाई किया और मैं फेल हुआ। तो ये भी एक जिंदगी का सबक है
1: तो बहुत
0: कि
1: दुखी हुए होंगे।
0: बहुत दुखी हो गया था, मुझे ऐसे लगा था कि पता नहीं मैं जिंदगी में अभी कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक डॉक्टर देवेंद्र राज अंकुर जी, जिन्होंने बहुत समझाया था कि ऐसा नहीं होता है, आप थिएटर करते रहो, जुड़ते रहो, जब अगर आप एनएसडी में नहीं हुआ सिलेक्शन तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी खत्म हो गई, आप कहीं और जगह भी। लेकिन बावजूद उसके मेरा मन नहीं मान रहा था, मैं बोला नहीं सर, मैं एक ऐसी जगह पर प्रशिक्षण लेना चाह रहा था कि जहां पर रात दिन आप सिर्फ अभिनय की बातें करते हैं, संगीत की बातें करते हैं, साहित्य की बातें करते हैं। तो फिर मन बनाया कि अगले साल दोबारा मेहनत करनी है, और अगले साल और ज्यादा मेहनत करके मैं वहां पहुंचा और मेरा फिर सिलेक्शन हो गया 2003 और 2006। ये 3 वर्ष मेरे यानी कि मिला जुला कर 1000 दिन की ट्रेनिंग मैंने वहां पर ली है।
1: क्या बात, क्या बात है। यहां रुकते हैं और एक गाना सुनते हैं। आपकी पसंद का कौन सा गाना यहां बजाया जाए?
0: मुझे लग रहा है कि मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो दोस्ताना फिल्म में
1: जी
0: अमिताभ बच्चन साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब पर फिल्माया है, और
1: बिल्कुल।
0: वो है सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो उसमें ना एक जगह पर वो एक सैड नोट भी है कि जहां पर किशोर कुमार और रफी साहब का दोनों का एक सैड नोट भी है, तो मुझे वो भी बड़ा पसंद है। लेकिन अगर वो एक फुल फेज में अगर वो गाना सुना दिया जाए तो बड़ा मजा आ
1: बिल्कुल, ये
0: जाएगा।
1: गाना सुनते हैं।
0: जी।

आलोक जी, दोस्ताना फिल्म का ये गाना हमने सुना, और इससे पहले बातें ये हो रही थी कि आपने पहले स्ट्रीट थिएटर से शुरू किया अहमदाबाद में, और वहां से आपने ये तय किया कि भाई अब मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना है। आपने ये भी

0: जिक्र किया कि परिवार में जो है वो वकालत की परंपरा थी, पिताजी वकील थे।
1: जी जी जी जी।
0: तो ये कितना आसान था अभिनय की दुनिया में जाना एक वकील का बेटा होकर?
1: जी, पापा का तो यही था कि मैं वकील ही बनूं, क्योंकि होता है ना कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील। लेकिन पापा ने ये भी एक उनमें गुण थे कि जब वो कॉलेज काल में पढ़ते थे तो उन्होंने भी काफी नाटक किए थे।
0: ओके।
1: तो उन्होंने वो नाटक किए थे, शेक्सपियर के प्ले किए थे उन्होंने, सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो पढ़ते थे, जेवियर्स में अहमदाबाद में। तो उन्होंने फिर बादल सरकार का एक स्पार्टकस नाटक भी खेला था।
0: अरे बाप रे।
1: तो फिर जब उनसे मैं परमिशन मांगता था कि मैं मोहल्ले के नाटक में भाग लेने जा रहा हूँ गणपति के लिए या जन्माष्टमी के लिए, तो वो बेझिझक मुझे कहते थे जाओ बेटा, उससे जिंदगी समझ में आएगी तुमको कि थिएटर एक रंगमंच है। लेकिन जब उनको ये कहा गया कि अब मैं पूरी तरीके से ही नाटक में हूं, तो उन्होंने कहा कि 100% करो, लेकिन प्रशिक्षण के साथ करो। उन्होंने ये कहा कि हर चीज को सीखा जा सकता है। और यही बात फिर एनएसडी में मुझे अंकुर जी ने कही कि आप गौर कीजिए कि आपको कोई सलून में आप गए हुए हो और आपको पता चले कि जो आपके अभी बाल बनाने वाला है या कटिंग करने वाला है आपके बालों की, वो कहीं से सीखा हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं तो उनको अपना सिर नहीं दूंगा। तो बोले कि आप कैसे सोच सकते हैं कि 2-3 घंटे का नाटक और आप बिना ट्रेनिंग के उतनी ही गुणवत्ता के साथ कर लोगे? तो पिताजी ने फिर मुझे परमिशन दी कि यू कैन गो। और फिर कॉलेज में मैंने कैंपस थिएटर किया। मेरे गुरु सौम्य जोशी जी जो फिल्मों में अभी लिखते हैं, उनकी फिल्म 102 नॉट आउट उन्होंने लिखी। उसके अलावा बहुत अच्छा थिएटर करते हैं वो गुजरात
0: लगातार, उनका तो बहुत अच्छा। हाँ, अच्छे प्लेज अभी भी चले।
1: हाँ, अभिजात जोशी एंड सौम्य जोशी दोनों भाई है। तो इन दोनों भाइयों के साथ मैंने थिएटर की जर्नी शुरू की थी अहमदाबाद में। तो पिताजी को लग रहा था कि ये जैसे वकालत भी एक अपने आप में रिस्की फील्ड है कि आपका काम हुआ तो ठीक है, वरना कचहरी के चक्कर लगाते रहिए। तो पिताजी ने फिर हमको कहा कि आप कर सकते हो। तो फिर मैंने कॉलेज में दबा के थिएटर किया।
0: वाह वाह।
1: तीनों तीन वर्ष मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला।
0: क्या बात है।
1: INT एक संस्था है जिसको इंडियन नेशनल थिएटर बोलते हैं, जो मुंबई बेस्ड है, लेकिन वो गुजरात में कंपटीशन करती थी कॉलेज में। तो ये कह सकते हैं कि 20वीं सदी का आखिरी अवार्ड मुझे मिला है और 21वीं सदी का प्रथम अवार्ड भी मुझे मिला।
0: वाह वाह।
1: तो 99 में मैंने पहला प्ले किया था तुत्तु तारा, एक शराबी का कैरेक्टर था जो जॉनी लिवर साहब के एक जोक पर हमने नाटक इम्प्रोवाइज किया था कि अहमदाबाद में चारों तरफ एक शराबी घूम रहा है बस। तो उस किरदार को मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर दूसरे दिन मैंने एक किसान की बायोपिक की थी, फार्मर सुसाइड्स बहुत हो रहे थे गुजरात में। तो सौम्य जोशी साहब की कलम थोड़ी वैसे, हाँ, इंकलाबी कलम रही शुरुआत से।
0: तो ये सब उन्होंने लिखे?
1: उन्होंने ही लिखे। दो शौक तो सही नगर वस्तु तो, और बहुत कमाल के लिरिसिस्ट है वो, कमाल के म्यूजिक कंपोजर है, कमाल के एक्टर, कमाल के डायरेक्टर। और मेरा सौभाग्य है कि मैं तो, मेरा पूरा परिवार उनका ऋणी रहेगा कि मुझे ऐसे माहौल से उन्होंने निकाला जहां थोड़ा मुश्किल था ग्रो करना, तो वहां से उन्होंने मुझे एक ग्रोइंग एक्टर एक बनाया। तो ये आज इस मंच पर उनको याद कर रहा हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे गुरु।
0: एनएसडी में पहुंचने के बाद आपका एक तरह से सपना पूरा हुआ और आपने कहा कि 1000 दिन वहां तकरीबन आपने निकाले हैं। तो एनएसडी की कुछ यादें हैं और वहां जो आपके बैचमेट्स थे, आपके सीनियर्स थे, उन सब के बारे में बताइए।
1: जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा यह है कि आप वहां जाते हो ना, तो आपके साथ प्रांगण में, उसके कैंपस में पूरा देश आपके साथ रहता है। तो सबसे पहला मजा तो वो आया कि जब सीनियर जूनियर के बीच में एक इंट्रो फेस होता था हमारा, जस्ट एक इंट्रो फेस होता था कि लोग पूछते थे आपके बारे में, तो बड़ा अच्छा था कि पहले हमारा इंटरेक्शन ऐसे होता था कि आप गुजराती हो और आपका एक बैचमेट आसामी है, आसाम से, तो आपको आसामी भाषा सीखनी है और आपको उन्हें गुजराती सिखानी है।
0: अरे गजब।
1: तो ये कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम से जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी हमारी आज तक बनी हुई है कि अब हम लाइक कोई किरदार में एक्सेंट डालना हो तो हम बड़ी आसानी से बंगाली एक्सेंट ले लेते हैं, एमपी का एक्सेंट ले लेते हैं। और किस्से तो इतने हैं, जैसे कि हमारे सीनियर पंकज त्रिपाठी जी थे, तो वो थर्ड ईयर में थे और हम फर्स्ट ईयर में थे, तो जब बातचीत होती थी विद्यार्थियों के बीच में तो हमको वो कहते थे कि अच्छा तुम गुजरात से हो, तो

0: गुजरात का फोक थिएटर के बारे में तुम्हारा क्या समझ है? तो हमने कहा कि हाँ भवाई और ऐसा फोक थिएटर है, और उनका बिहार का एक अलग फोक थिएटर है, लौंडा नाच और ये सारी चीजों का। तो उस जगह से लाइक एक होता है ना कि आप टीचर से जितना सीखते हो उतना आपके सीनियर्स भी आपको इतने प्यार से सिखाते थे। इश्तियाक भाई थे तो उनका म्यूजिक पर कमांड था,
1: अरे हारमोनियम पे बैठ जाएं वो तो
0: हारमोनियम पर
1: फिर
0: बैठ जाएंगे तो वो चलता ही रहेगा उनका। तो हर तरह से यानी कि सुबह से लेकर रात तक हमारा पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती थी। एक मजेदार किस्सा है वो ये है कि हम लोग गए थे के एन पणिकर जी के थिएटर में केरला, तो वहां पर हमको तैया तैयम नाम का एक नाटक करने को कहा गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म था। ये तैया तैयम एक रिचुअलिस्टिक थिएटर केरला का होता है कि जिसकी यात्रा करीबन 9-10 दिन तक चलती है, यानी 12-15 दिन तक एक ही शो चल रहा है।
1: जी
0: रोज रात को आ रहे हैं लोग, शो चल रहा है 2-3 घंटे, फिर प्रसाद बट रहा है, फिर दूसरे दिन आ रहे हैं। तो हमको वहां पर वहां की जो गवर्नमेंट के साथ टाई अप होकर और हम वहां पर गए, तो पणिकर जी की एक बात जो मुझे इतनी अच्छी लगी, जो सीखने को मिली, कि वो व्यक्ति ने हमको विलंबित विधा में यानी कि विलंबित लय में, आप संस्कृत नाटक की जो एक लय होती है, जिन फिर हमको पता चला कि मोहनलाल जी भी उनके वहां प्ले कर चुके थे, तो वो विलंबित लय में आप म्यूजिक के साथ बीट के साथ एक सेंटर स्टेज पर आते हो और वहां लार्जर देन लाइफ आपको एक्ट करना पड़ता है, तो दैट्स गुड। यानी एनएसडी की तो बात ही अलग है। तो
1: बिल्कुल।
0: हमारे
1: और
0: सीनियर कई रतन थियम जी का थिएटर करने गए थे वहां
1: अच्छा
0: पर, वहां थांगटा सीख कर आए। हम
1: हाँ
0: केरला गए तो हम वहां कल्लरी पैट्टम सीख कर आए, तो आज भी
1: हाँ
0: वो कल्लरी पैट्टम की आर्ट मुझे आज भी याद है और आज भी मैं उसी से व्यायाम करता हूं अपना।
1: अरे वाह वाह वाह। तो एक तरह से ये होता है कि एक तो आप भारत से परिचित होते हैं, परंपराओं से, संस्कृति से परिचित होते हैं, और दूसरा नाट्य परंपराओं से अच्छी तरह से परिचित होके एक ठोस एक्टर या एक ठोस कलाकार बना के एनएसडी आपको
0: भेजती है।
1: मैदान में भेजता है कि अब जाओ। आपके साथ भी ये हुआ कि तय करना था कि दिल्ली में रहना है कि मुंबई जाना है?
0: नहीं, मेरा तो पहले से ये था कि मुझे मुंबई ही जाना है, क्योंकि मैं अगर गुजरात में भी जाता तो गुजराती थिएटर अपने आप में एक कमर्शियल थिएटर है कि जहां से आदमी आज भी सिर्फ गुजराती थिएटर करने वाले, परेश रावल जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि आज अगर पूरे भारत देश में रोज थिएटर हो रहा हो तो वो सिर्फ गुजराती है।
1: वाह सही बात
0: रोज
1: है।
0: रोज यानी कि आज आप बोरीवली का प्रबोधन ठाकरे या घाटकोपर का ऑडिटोरियम या भाईदास साहब, लेकिन तेजपाल हॉल या वहां पर कहीं पे भी चले जाओ कि रोज आपको एक नया नाटक देखने को मिल सकता है। तो मुझे तो पता था कि मुझे थिएटर करना है या सिनेमा करना है, तो मेरे लिए पृष्ठभूमि मुंबई से अच्छी कुछ नहीं हो सकती थी। तो दिल्ली में मेरा रुकने का प्लान नहीं था, यानी कि रंगमंडल से जुड़ने का और उसका मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरा यही था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ट्रेनिंग ली है, अब जल्दी से इस कैंपस को मुझे छोड़ देना है, क्योंकि मैंने ऐसे कई हमारे सीनियर विद्यार्थियों को देखा कि फिर वो वहीं रहते थे तो, और हम रोज पूछते थे कि दादा आप कौन सी बैच के हो, तो कोई कह रहे थे कि हम 95 के बैच के हैं, 92 के बैच के हैं, और वही कैंपस में आकर और कैंपस के साथ ही जुड़ जाते हैं, तो आदमी आगे चल के ग्रो नहीं कर पाता। तो हमने सोचा कि हमें दिल्ली तो नहीं रहना है, हम मुंबई चले चलेंगे, और मुंबई और अहमदाबाद के बीच में डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं था, तो कॉन्फिडेंस मेरा बरकरार रहा, और मुंबई में आते ही सरस्वती माता की कृपा से काम भी अच्छा मिलने लगा।
1: यहां एक गाना सुनते हैं, फिर
0: जी
1: मुंबई की बातें
0: जी
1: करेंगे।
0: जी जी
1: तो बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गाना होगा यहां पर? हाँ
0: जी धर्मवीर फिल्म का गाना मेरा बहुत फेवरेट है, जो दोनों सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं
1: वाह
0: अपनी जोड़ी, और वहां पर भी एक सैड नोट आता है
1: बिल्कुल अरे
0: माता को लेकर के, ये जो सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है, तो रानी माँ से मुझको भी मिल जाए ममता थोड़ी,
1: वाह वाह वाह
0: तो ये एक अगर आप सुना दे तो
1: जरूर सुनते
0: बहुत
1: हैं ये
0: अच्छा।
1: गाना।
2: सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी, सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी, पर थोड़े से भाई टूटे

0: धर्मवीर फिल्म का ये गाना हमने सुना और बातें मुंबई की हो रही हैं। दिल्ली की दुनिया बहुत अलग है और मुंबई की दुनिया संघर्षों की दुनिया है। जब आप मुंबई आए तो क्या कैफियत थी और क्या परिस्थितियां थी?
1: बहुत वैसा सवाल है कि सच में आज भी वो लम्हा याद करता हूँ तो थोड़ा पेट में एक घबराहट सी हो जाती है कि मैं आया था तब मैं शादीशुदा था,
0: अच्छा
1: यानी कि मेरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की फर्स्ट ईयर के बाद ही अरेंज मैरिज मेरा घर में गुजरात में शादी हो गई थी।
0: अच्छा ऐसा।
1: हाँ,
0: और
1: और
0: आपने ये तय किया कि भाई पढ़ाई के दौरान शादी कर लेते
1: हाँ हाँ
0: हैं?
1: क्योंकि हमारे वहाँ बहुत जल्दी हो ही जाती थी तो उससे कोई छुटकारा था नहीं, तो बहुत
0: तो एक काम करते हैं, संघर्ष के बारे में बाद में बात करते हैं, ये शादी वाली बात पूरी कर लेते हैं पहले।
1: जी फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ रहा था, उससे पहले ही हमारी शादी की बात तय हो गई थी। मेरी वाइफ जिसका नाम रुक्मणी है और वो बीकॉम कर रही थी, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और मैं बीए कर रहा था, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसका थिएटर से कोई ताल्लुकात नहीं था, लेकिन अच्छे घर की संस्कारी लड़की थी तो घर वालों ने कहा कि शादी तो आज नहीं तो कल करनी है। तो हमने कहा कि नहीं, हमको तो अभी दिल्ली जाना है, पता नहीं क्या। बोले नहीं, तुम शादी दिल्ली में छुट्टियों में आकर शादी कर सकते हो और उसके बाद फिर आराम से तुम जिंदगी बसर कर सकते हो। तो मुझे भी ऐसे लगा कि चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जब इतने ही संघर्ष ले लिए है जिंदगी ने तो ये भी एक संघर्ष निपट जाएगा। तो फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में जब मैं घर आया 2004 में, तब हमारी शादी हुई और अभी हमारी शादी को 22 साल कंप्लीट हो गए। और जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं पास आउट होने के बाद जब बम्बई आए तो ये हालत थी कि अब पत्नी को लेकर आपको बम्बई निकलना है, तो
0: और
1: वही
0: ऑलरेडी वो आपके बिना इतने समय रह चुकी
1: हाँ, क्योंकि आप कितना ही अत्याचार कर लोगे कि अगर आपकी सहूलियत के हिसाब से अगर आप जिंदगी को जाते हैं तो सब कुछ नहीं मिलता। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो करते हैं संघर्ष जैसे सभी लोगों ने किया है। तो माहड़ा में हम लोग रहते थे, मलाड में, और शुरुआती दिनों में काम को लेकर कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमने थिएटर किया रात दिन, अच्छे से प्रांगण था, हर तरह की

0: सहूलियत हमको मिल जाती थी रहने के लिए, हॉस्टल, हवा, गर्मी लग रही है तो कूलर लग गया, ठंडा पानी खराब हो गया तुरंत बन गया। अब यहाँ क्या करेंगे? तो यहाँ पहली बार पता चला कि लाइट बिल आता है 350 रुपया एक वन रूम किचन का, वो भी बहुत मायने रखता है एक हिसाब किताब में। तो ये संघर्ष शुरू किया, लेकिन वही मैंने कहा था ना कि पापा की एक बात मुझे वो हमेशा याद रही थी कि लाइफ में कुछ इस तरीके से करो कि आप अभिनय भी कर सको और घर भी तुम्हारा चले उस तरीके से। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ट्रेनिंग क्या है, अपने आप में थिएटर में आपको इतना वो मंच देते हैं कि आप किसी को थिएटर पढ़ा भी सकते हैं, यानी उतना लेवल का नहीं जैसे वहां के फैकल्टी पढ़ाते हैं, लेकिन मोटा मोटा खाका आप किसी को बता सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाती है। तो मैंने एनजीओ सेक्टर पे आकर काम करना शुरू किया और मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन और स्ट्रीट प्लेटफॉर्म बॉयज के साथ थिएटर एज अ थेरेपी काम करता था। आगरीपाड़ा, मलाड़ से आगरीपाड़ा जाना, तो पहले ही दिन जब लोकल ट्रेन में मैं चढ़ा तो मैं रो पड़ा, क्योंकि एक तो पहले चढ़ने को नहीं मिल रहा था और हमको यही सिखाया कि टाइम पे पहुंचना है कोई भी क्लास में, तो मुझे 150 रुपए पर क्लास मिलता था उसके लिए। तो मुझे लगा कि यार अगर दो क्लास मिल जाए तो रोज का 300 रुपया तो मुझे यहीं से मिल रहा है, यानी महीने का 9,000 रुपए और घर का किराया ये सब मिला के 5-6 हजार में हो रहा था। तो वो संघर्ष के दिनों में मैंने एनजीओ सेक्टर में काम किया और साथ साथ में ऑडिशन देना शुरू किया।
1: जी जी जी।
0: और फिर यात्रा धीरे धीरे सहूलियत के साथ आगे बढ़ने लगी।
1: क्या बात है। तो लोकल ट्रेन में जाके और आप वहां सिखाते थे बच्चों को, वो यात्रा ज्यादा बड़ा संघर्ष थी या वो बच्चों को सिखाना ज्यादा बड़ा संघर्ष था?
0: बच्चों को सिखाना बहुत बड़ा संघर्ष था, क्योंकि यात्रा तो क्या है कि हमको लग रहा था कि ये भीड़ है, लेकिन मुंबई में आपको कहीं पे भी भीड़ दिखाई देगी, कोई ऐसी जगह होगी नहीं जहां भीड़ ना हो। लेकिन हाँ, बच्चों के साथ क्या होता था कि मैं सिखाते सिखाते बहुत सीखता भी रहता था, जैसे तरह तरह के लोग थे और वही एनएसडी जैसा माहौल वहां पर भी था कि कोई उड़ीसा से एक बच्चा आया है। अब उसमें कुछ केसेस ऐसे होते थे कि कुछ बच्चे हीरो बनने आए थे,
1: लो अब ये समझाना भी मुश्किल है,
0: और उनको मैं ही समझा रहा हूँ क्योंकि मैं भी हीरो बनने आया हूँ। तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया था कि ये सेल्फ लर्निंग हो रही थी। तो कुछ लोगों को वो एनजीओ ऐसी थी कि वो ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करती थी जो बॉम्बे में बेचारे भटक रहे हैं, है ना, फिर कोई एडिक्शन में घुस गए हैं, तो उनके बच्चों की पहले बातचीत होती थी तो पता चलता था कि एक बच्चा है जो सलमान खान के घर के बाहर ही सोता था।
1: ओ, ओ, ओ।
0: वो सलमान खान को देखने ही इधर आया था, फिर उसको लगा कि मुझे सलमान खान से अच्छे से मिलना है तो एक्टर बन जाना पड़ेगा।
1: अरे बाप रे।
0: तो ऐसे मेंटालिटी के बच्चों के साथ मैंने वैसे ही काम किए कि फिर उनको जिंदगी का फलसफा समझ में आया और फिर उनको हमने एक अच्छे ट्रैक पर लेकर गए। उसमें से जो टैलेंटेड लोग थे उनको भी एक्टिंग का भी काम दिया गया, लेकिन वही होता है ना कि टारगेट किस तरीके से सेट करके आते हैं और कैसे लोग आ जाते हैं।
1: तो उनमें से कई लोगों को एक दिशा मिली।
0: दिशा मिली, जैसे कि कई लोगों ने पेपर बैग बनाने का काम शुरू किया, कई लोगों ने पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने का काम शुरू किया, तो वो भी अपने आप में बड़ी बात थी कि जो बेसहारा थे, सड़क पर सोते थे, फुटपाथ
1: अपना अपना काम कर पाए,
0: अपना अपना काम कर रहे हैं। आज वो शादीशुदा है, कुछ लोग आज भी फोन करते हैं, आलोक सर कैसे हैं आप, हमको याद है आपने हमको ये डायलॉग सिखाया था। तो मैंने डायलॉग उनको जिंदगी के लिए सिखाया था कि भाई कोई भी ऐसा एक टोंग ट्विस्टर ले लेते थे, एक ऊंचा ऊंट है, पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या पीठ ऊंची ऊंट की। अब इसी को अलग अलग इमोशन में बोलो।
1: यस।
0: तो कोई गुस्से में बोलता था एक ऊंचा ऊंट है, पूंछ ऊंची ऊंट की है, पूंछ से भी ऊंची क्या पीठ ऊंची ऊंट की।
1: अलग अलग।
0: ये थिएटर एज अ थेरेपी, तो बच्चे हंसते थे और वही उनके साथ भी एक परिवार जैसा संबंध बन गया था। साथी नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, आज तो शायद वो नहीं है वहां, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करती थी, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि साथी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे शुरुआत में काम दिया जिससे मैं बॉम्बे में टिका रहा और फिर धीरे धीरे फिल्मों के ऑडिशन देना जो रोजमर्रा, जो अमरीश पुरी साहब ने जो काम किया होगा वही हमने किया कि लोगों से मिलना,
1: वो एक प्रोसेस है कि
0: वो एक प्रोसेस है, वहां से कोई नहीं बच सकता।
1: तो शुरुआती तौर पर किस तरह के एक्सपीरियंसेस थे जब आप काम मांगने जाते थे, और क्योंकि तब शायद उस तरह से कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं आए
0: नहीं थे,
1: और
0: नहीं थे,
1: अपने
0: नहीं
1: फोटोज लेकर और पोर्टफोलियो लेकर जाना
0: जी जी जी जी। मुझे आज भी याद है कि चंदन टॉकीज के पास एक फोटोग्राफर था
1: जो मैं
0: और वो कुछ 100 रुपए की एक तस्वीर निकाल के देते थे
1: जी,
0: और मेरे पास एक ही डेनिम का शर्ट था, जींस का, जो मुझे एनएसडी से ही दिल्ली में ही खरीदा हुआ था।

0: क्योंकि वहां वो सेल वगैरह लगते रहते हैं मंडी हाउस, तो वो पहनकर मैंने उसको कहा कि 5 फोटो भैया हमको कोई ऐसी निकाल दो जिससे लोग समझ जाए कि हम भी एक्टिंग करने के लिए आए। तो पांचों पांच एक ही कॉस्ट्यूम में तो हो नहीं सकती थी,
1: बिल्कुल
0: तो मैंने कहा कि अंदर हमने एक गंजी पहनी हुई है, 2-3 फोटो शर्ट में निकाल लो, 2-3 गंजी में निकाल लो स्पोर्ट्स लुक के। तो वो 5 फोटो से हमने हमारी यात्रा शुरू की। और मुझे याद है कि जय माँ संतोषी माँ की फिल्म रिमेक बन रही थी उस वक्त, दोबारा
1: हाँ
0: दोबारा, तो उसमें हमारे एनएसडी के कास्टिंग डायरेक्टर थे परेश पारेख जी।
1: हाँ
0: तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम आ गए, फोन किया उनको, 2-4 नंबर लेके निकला था। तो उन्होंने सीधा मुझे दादर बुलाया। अब दादर मेरे लिए अपने आप में वैसा था जैसे हम अहमदाबाद से कहीं,
1: बड़ा चल
0: हाँ,
1: गया
0: बड़ौदा चले गए, वैसी यात्रा थी। तो दादर बुलाया और मैं चप्पल पहनकर चला गया, चप्पल भी वो थी बरसाती प्लास्टिक वाली, है ना, उसका एक अंगूठा निकला हुआ था। अब वो अंगूठे को उंगलियों में फंसाते हुए मैं सीढ़ियां चढ़ा कि भाई यहां तक हो जाए। फिर वहां गए तो उन्होंने कहा कि हाँ ऑडिशन दे दो। तो मैं बोला चलो यार, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं, ऑडिशन तो दे ही देंगे। लेकिन हमसे हो नहीं पाया ऑडिशन, हमको समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कह रहे थे, कैसे समझ रहे थे। फिर हमने सिर पकड़ लिया, मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है अभी भी, तो ये भी समझना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया क्या है। तो फिर वो परेश भाई ने बहुत प्यार से समझाया कि थोड़ा खुल के करो, थोड़ा तुम टेंशन में हो, सुखद अवस्था में रहो। मैं बोला सर सुखद अवस्था में कैसे रहूं, 3-4 दिन के बाद फिर रेंट देना है ये भी होता है। लेकिन इस तरीके से कारवा चल पड़ा। और पहली फिल्म मैंने की थी टशन, ये भी बड़ी बात है कि यश चोपड़ा की फिल्म में मेरा कास्टिंग हुआ,
1: और ये पहली फिल्म बनी,
0: पहली फिल्म बनी
1: ये
0: मेरी।
1: इसमें कितना संघर्ष करना पड़ा?
0: इसका ऑडिशन ग्रुप में हुआ कि भाई सबको चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी,
1: बहुत बड़ी
0: अनिल
1: फिल्म,
0: कपूर,
1: मल्टी स्टार।
0: हाँ अनिल कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार का एक अलग लेवल। अनिल कपूर उसमें पहली बार नेगेटिव रोल कर रहे थे, विलन, और अक्षय कुमार का नाम उसमें बच्चन पांडे था, और डायरेक्टर थे विक्टर साहब, विजय विजय कृष्णा आचार्य, बहुत अच्छे डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि यार वैसे तो रामलीला का सीन है और कोई हनुमान बना हुआ है, कोई भाला पकड़, तो ये जो वो भाला पकड़ने वाली कहावतें जो सुनी थी एनएसडी में कि यार क्या करोगे भाला पकड़ के खड़े रहोगे पीछे, तो मैं बोला ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों शुरुआत हो रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार इसमें से कोई अच्छी लाइन बोलने वाला एक एक्टर चाहिए। तो मैंने हाथ ऊपर कर दिया, मैं बोला सर मैं बोलूंगा, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा आपको, कि बताओ तो सही आपको आता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल
0: तो फिर उन्होंने मुझे रामलीला का कोई कैरेक्टर नहीं दिया, बल्कि रामलीला देखने के लिए जो लोग बैठे थे उसमें फर्स्ट रो में मैं बैठा हूं। अब बड़ी बात क्या है, बहुत मजेदार किस्सा है कि अक्षय जी को जो डायलॉग बोलना था वो उन्होंने मेरी छाती पे लिखा हुआ था, तो प्रिंटआउट उन्होंने मेरी छाती पे लगा दिया। और मुझे लगा ये मेरे डायलॉग तो नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा ऐसे देखकर। तो फिर का पता चला कि वो अक्षय जी के डायलॉग है, वो आपको भी देखेंगे और प्रिंटआउट को भी देखेंगे। और मेरा डायलॉग था उनके साथ, बढ़िया सा डायलॉग जो उसके बाद भी बहुत हिट हुआ, वो डायलॉग कि वो आते हैं और लड़की को बोलते हैं कि अरे पार्वती तू यहां क्या कर रही, लड़की का नाम पार्वती था लेकिन रामलीला चल रही थी तो वो सीता का रोल कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि अरे भैया वो सीता है, सीता पार्वतिया तो शिव पुराण का हीरोइन है, गा कुछ भी बोलते ऐसा कुछ, हमने हंसा। तो वहां जो एक्चुअल ऑडियंस थी ना वो भी हंसने लगी कि हमने इस तरीके से कुछ डायलॉग बोला। एंड अक्षय जी के साथ बड़ा अच्छा अनुभव रहा, और वो मेरी पहली फिल्म थी। फिर वो रिलीज हुई तो देखने जाना है पहली बार कि अपने आप को
1: पर्दे पर दिख रहा
0: हाँ
1: है।
0: 70 mm के पर्दे पर कैमरा ये वो। तो फिल्म चली नहीं, लेकिन मजा आया कि हमने अपने आप को देखा कि यार एडिटिंग में कहीं वो सीन कटा नहीं, मैं पूरा दिखा। और मराठा मंदिर में मैंने देखी, तो
1: वाह
0: मराठा
1: वाह,
0: मंदिर अपने आप में एक
1: एक ऐतिहासिक थिएटर,
0: ऐतिहासिक थिएटर है। तो दिस इज अ थिंग।
1: वाह। और इसके बाद फिर कारवां आगे बढ़ा।
0: हाँ फिर तो वही है कि एक काम से दूसरा काम, लेकिन हाँ संघर्ष तो बीच बीच में चल ही रहा था। ऐसा नहीं है कि एक फिल्म कर ली तो दूसरी कल ही कल मिल जाएगी, आज तक भी हमको फिल्में ढूंढने के लिए थोड़ा वो संघर्ष तो करना ही पड़ता है कि कौन सी जगह पर आपकी जरूरत है, इम्पोर्टेंट ये है। तो यही कह रहे थे ना कि यार तुमको कैसे यश चोपड़ा के वहां से काम मिल गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि तुम तो राम गोपाल वर्मा के एक्टर हो।
1: अच्छा
0: हाँ एक ये भी होता था ना कि रामू जी के फिल्मों में ज्यादातर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक वो

0: पैटर्न बनी हुई थी, राजपाल यादव जी हो गए और भी एक्टर्स जैसे विजय राज जी हमारे एनएसडी रिपेट्री के, तो ये भी एक बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी कमर्शियल फिल्म में मुझे एक छोटा सा किरदार मिला, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई टशन। फिर आगे तो धीरे धीरे काइपियो छे, काइपियो छे में मैंने सुशांत जी के साथ काम किया, उसमें गट्टू जी डायरेक्टर थे अभिषेक कपूर, वो बहुत अच्छा उसमें किरदार, धीरे धीरे बढ़ता गया किरदार, और अब ऐसा है कि हमको अच्छे किरदार मिलने लग गए हैं।
1: बिल्कुल, बजरंगी भाईजान में भी आपने काम
0: जी जी
1: किया।
0: जी जी बजरंगी भाईजान का मेरा सलमान जी के साथ काफी अच्छा वो सीन था बस में।
1: हाँ, बस वाला सीन,
0: जी जी
1: बिल्कुल, उसके बारे में बताइए कैसा रहा।
0: बढ़िया, उस वक्त दुनिया को बस यही लगता था कि भाई सलमान जी पता नहीं किस तरीके से बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बहुत सहज तरीके से हमसे मिले थे, और उसमें भी यही था कि तीन चार लोग बस में बैठे थे, अब बोले कि डायलॉग बोलने वाला है, फिर हमने हाथ ऊपर कर दिया था, मैं बोला हम बोल लेंगे सर, अब वहां पर भी हमारी सीट के वहां सलमान जी के डायलॉग लिखे हुए हैं।
1: अच्छा, ऐसा भी था।
0: हाँ, डायलॉग तो उनके लिखे हुए ही रहते थे, और मैं तो तुगलक के भी याद करके चला गया था डायलॉग
1: अरे बाप रे।
0: कि जहां कम पड़ जाए तो हम बोल देंगे, तो वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूं,
1: तुम
0: तू
1: हाँ
0: हाथ
1: करना।
0: करना, तो वो शहरों के सारे नाम मेरे सीट पे लिखे थे, बरोड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, ये वो, और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, वो मुझे पकड़ना था, तो वो बड़ा मजेदार सीन है, वो कभी आप आज
1: बिल्कुल
0: भी वो
1: बिल्कुल।
0: फिल्म सेटमैक्स पे चलती है तो उस सीन की, और इतना अच्छा भाईचारा हमारा बना कि फिर मैंने जब दूसरी बार ट्यूबलाइट फिल्म में काम किया, सेम डायरेक्टर सेम स्टार, तो वो मुझे मुझे पहचान गए सलमान भाई, अरे बोले तुम तो पहले भी काम कर चुके हो ना मेरे साथ में, बोला हाँ सर मैंने बजरंगी भाई, हाँ, कमाल का यार तुम्हारा वो हंसी बहुत अच्छा है, तो उसमें मैंने हंसने का
1: जी
0: एक
1: जी
0: सिग्नेचर बनाया
1: जी
0: था,
1: जी जी
0: तो ये है, और उस वक्त वो तीन सेट पर काम कर रहे थे,
1: ओके।
0: प्रेम रतन धन पायो,
1: हाँ,
0: बिग बॉस और बजरंगी भाईजान,
1: ओके।
0: और एनडी देसाई स्टूडियो था क्योंकि सब नजदीक है, क्योंकि बिग बॉस लोनावाला में था, प्रेम रतन धन पायो वहीं था,
1: और ये करजत में है।
0: हाँ करजत में था, तो उनके साथ खाना वाना भी हुआ, तो बहुत अच्छे से वो खिलाते हैं अपने को एक्टर को, खुद बहुत कम खाते हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कबीर खान सर बहुत प्यार से समझाते हैं एक एक किरदार को, तो हंसी ठल्ले हुए वहां पर भी कुछ उनकी बातों के, जब शूट नहीं कर रहे होते हैं तब भी आप बात करते हैं ना को एक्टर से, तो सलमान,
1: बिल्कुल।
0: हाँ तो सलमान भाई से बोले अच्छा है अच्छा है, हाँ गुड गुड ऐसा, तो अब इतना बड़ा एक्टर, आई मीन हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा है सलमान खान, तो बचपन से जिनको मैंने प्यार किया फिल्म में देखा, हमने जिनको हमने बागी फिल्म में देखा, वो किरदार आपके सामने बैठा है आपके साथ एक ही फिल्म में, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत
1: मायने रखता
0: मायने
1: है
0: रखती
1: जी। एक तो ये कि अभी एक गाने की जगह बनाई जाए और उसके बाद आगे की बात करेंगे,
0: है।
1: तो
0: मैं
1: कौन सा
0: चाहता
1: गाना
0: हूं
1: होगा?
0: बजरंगी भाईजान फिल्म का ही एक गाना हो जाए, भर दो
1: बिल्कुल,
0: झोली मेरी,
1: क्या
0: जो
1: बात है,
0: अदनान सामी
1: सुनते
0: ने,
1: हैं अदनान समी की
0: जी
1: आवाज
0: जी
1: से।
0: जी जी जी

0: बजरंगी भाईजान की हमने बातें की और फिल्मों में फिर उसके बाद आपका काम आगे जो है वो बढ़ता चला गया और एक तरह से मुंबई में एक जगह बनती चली गई।
1: जी,
0: टेलीविजन भी किया और थिएटर की दुनिया में भी आप दोबारा सक्रिय हुए मुंबई में।
1: हाँ,
0: ये बातें
1: हाँ, करेंगे। तो थिएटर तो मैंने कहा ना कि मुझे गुजराती थिएटर से बहुत होप थी शुरुआत से और वो आज भी है मुझे, क्योंकि एकमात्र ऐसा थिएटर है जो आपको रोज एक शो दे रहा है।
0: जी,
1: जैसे ही आप ग्रीन रूम में पहुंचते हो अपना कॉस्ट्यूम होते हैं ना, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, कुली फिल्म का बच्चन साहब का डायलॉग, तो वैसा वहां वो ऑर्गेनाइजेशन है उनका, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने थिएटर किया था काफी, सिनेमा करता रहा, टीवी शो के लिए मैंने ऐसे अपने आप को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया मैंने टीवी शो के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब थिएटर मेरे पास है जो गुजराती थिएटर है, जो पैसों वाला थिएटर है, तो क्यों फिर मैं अपने आप को दो तीन जगहों पर बांटता चला जाऊं। तो फिर मैंने सिनेमा और थिएटर, थिएटर में मैं गुजराती थिएटर, हिंदी थिएटर, अभी लेटेस्ट अभी भी मैं लाइलाज प्ले कर रहा हूँ,
0: पंकज त्रिपाठी जी,
1: पंकज त्रिपाठी जी जिसके प्रोड्यूसर है, उनकी वाइफ मृदुला त्रिपाठी और फैज मोहम्मद ने उसको, वो भी एनएसडी के मेरे जूनियर है, और बड़ा इंटरेस्टिंग म्यूजिकल प्ले है, एक बैंड वालों की कहानी है।
0: हाँ,
1: कितनी गजब कहानी है कि बैंड वाले जो होते हैं वो कई बार अपनी ही गर्लफ्रेंड की शादी में बैंड बजाने चले जाते
0: हैं। अरे बाप रे,
1: दिस इज अ वन लाइन।
0: जी जी,
1: तो ये ऐसी ट्रेजेडी है, तो बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके और इतने सहज तरीके से वो आज भी लोगों से हमसे मिलते हैं।
0: पुराना आपका तो नाता है, आपके सीनियर रहे हैं।
1: फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर तो समझ लो ना कि वो एक बहुत है आपके, आप तीशु भाई, इरफान भाई, इनका भी ऐसा ही फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर वाला जो रिलेशन होता है,
0: हाँ,
1: ये बहुत मायने रखता है, तो वही मेरे साथ भी हुआ।
0: जी, तो ये जो इन दिनों थिएटर की जो परंपरा है वो फिर से समृद्ध है और फिल्मों के कलाकार भी अब थिएटर की दुनिया का रुख करते हैं और दर्शक भी प्लेस को अलग अलग शहरों में इंतजार करते हैं, देखना चाहते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है और ये कितनी अच्छी परंपरा है कि थिएटर समृद्ध हो रहा है?
1: बिल्कुल, मुझे तो

0: तक लगता है कि आज से 3,000 साल पहले भी थिएटर चल रहा था,
1: जी
0: बिफोर बीसी में, हम बिफोर क्राइस्ट, हम ग्रीक थिएटर की हिस्ट्री वगैरह देखते हैं, तो वहां से लेकर आज तक कभी थिएटर वीक नहीं हुआ है, हम ही कमजोर पड़ गए हैं, करने वाले ही कमजोर पड़े हैं, थिएटर कभी वीक नहीं हुआ है। ये नसीर साहब का भी एक स्टेटमेंट मैंने सुना था, नसीर सर का, कि उन्होंने एक जगह कहा था कि जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर रहा था तब लोग बोल रहे थे कि थिएटर ऑक्सीजन पर है, आज तक भी वो ऑक्सीजन पर, यानी आज तक नहीं मरा तो कैसे
1: लेकिन हमेशा
0: ऑक्सीजन।
1: ये कहा जाता है ये थिएटर ऑक्सीजन पर है।
0: हाँ, हमेशा कहा जाता है, तो ये एक मिथ जो बना हुआ था वो मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे टूट रहा है, और अब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जैसे कि पहले मुंबई में हम सिर्फ पृथ्वी थिएटर में ही एक डिपेंडेंट थे, लेकिन अब नीता मुकेश अंबानी के वहां पर भी कल्चरल सेंटर में ऑडिटोरियम बन गए, बहुत इंटीमेट स्पेसेस सब डेवलप हुई है, कि आप चार किरदारों को लेकर एक परसाई जी की कहानी उठा लो और उसको भी नाटक का रूप दे दो। और इसमें सबसे बड़ा रोल है, अगर मैं कहूँ ना, कि थिएटर घर घर तक पहुंचाने में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो है ही, अब्राहम अलकाज़ी साहब तो है ही, लेकिन उनके जितने भी शिष्य हैं, उनमें अंकुर जी है, उनमें रामगोपाल बजाज है, रतन थियाम है, बंसी कौल है, इन सब लोगों ने थिएटर की बहुत बड़ी साधना की, और उस वजह से आज वो थिएटर हमको हमेशा अपनी तरफ चुंबक की आकर्षण की तरह वो हमें खींचता है। जैसे कहानियों का रंगमंच, इतनी प्यारी विधा है ये,
1: अंकुर जी ने
0: अंकुर
1: बनाई
0: जी की विधा है ये,
1: जी।
0: अंकुर जी, महेश आनंद जी, लेकिन अंकुर जी का ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगता था हमको, हमने प्रेमचंद जी की कहानियां भी की थी, जिनेंद्र जी की भी कहानियां की थी, और उनका एक ही था कि जीरो कॉस्ट बजट है इसमें, आपके पास कहानी है और मंच है,
1: बस
0: लाइट अगर हुई तो ठीक है, बोले बोले अगर एक आध हेलोजन जल गया तो ठीक है आलोक, बाकी और कुछ नहीं है। और एक कहानी के हमको तीन तीन ड्राफ्ट बनाने को कहते थे, कि पहली कहानी में मैं बड़े भाई साहब बनाऊं तो दूसरे ड्राफ्ट में मैं छोटा भाई बनूंगा, अब वो छोटा भाई क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, और कहानी का एक भी शब्द आगे पीछे नहीं होना चाहिए,
1: सेम का सेम
0: सेम
1: मतलब।
0: टू सेम। तो फर्स्ट टाइम मैंने फील किया कि व्हाट इज द नैरेटिव एक्टिंग एंड व्हाट इज द सब्जेक्टिव एक्टिंग, तो नैरेशन के साथ। तो आज थिएटर अपने आप में एक अच्छा रोल अदा कर रहा है समाज में, और बहुत अच्छी बात है कि बड़े बड़े स्टार फिल्मों में काम करने के बाद भी थिएटर को एज अ अपना वो समझ कर रहे हैं, कि हमें और कुछ नया सीखने को मिल जाए थिएटर में, और
1: बिल्कुल।
0: व्हाट इज द थिएटर का कंट्रीब्यूशन फिर सिनेमा में ले जाते हैं,
1: हाँ तो दोनों तरफ की धाराएं
0: दोनों
1: चल रही
0: तरफ
1: हैं।
0: की धारा।
1: आप तो कई भाषाएं जानते हैं और जाहिर है कि अब फिर ये थिएटर में भी ये काम आते हैं। आपने यहां मुंबई में गुजराती थिएटर भी किया।
0: मैंने गुजराती थिएटर किया, मैंने एक हमारी खुद की जो मदर टंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, भांतू बोली बोलते हैं उसको,
1: अच्छा
0: हम लोग ट्राइबल है एक्चुअली,
1: जी
0: वो तो
1: जी तो ये
0: घुमक्कड़
1: मराठी का एक प्रकार है या
0: नहीं,
1: गुजराती का एक प्रकार है।
0: ये अपने आप में है ना, ये राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाती भाषा है,
1: अच्छा
0: बट ये लोग बंजार यानी घुमक्कड़ रहे, तो कोई गुजरात में स्थायी हो गया, कोई महाराष्ट्र में हो गया, तो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं मराठी में और गुजराती में, लेकिन जब आपस में मिलेंगे तो उनकी एक विशिष्ट बोली है।
1: अरे वाह
0: अगर आप कहें तो मैं उस बोली में ना, मेरी
1: जी
0: एक फिल्म भी आई है दिल्ली क्राइम सीजन 2,
1: हाँ।
0: वो किरदार मेरा उसी कम्युनिटी के था,
1: तो
0: तो
1: आपने वो किरदार वैसा बनाया
0: नहीं
1: या
0: नहीं मैंने राइटर के साथ डिस्कस किया था, भावेश मांडलिया राइटर
1: जी जी
0: जिन्होंने
1: जी
0: ओ माय गॉड
1: जी
0: लिखी, तो उनके साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि ये बैक स्टोरी आपकी बहुत अच्छी जा रही है, यानी मैंने अपनी बैक स्टोरी को उस किरदार के अंदर रखा, तो वो भांतु बोली में बात करते हैं, जैसे मुझे बोलना है कि कहाँ जा रहे हो और शाम तक वापस आ जाओगे ना, अरे की तोड़ जा रहा था सांझा सुधी उल्टा ही जांगड़ा ना, एकदम
1: इसमें
0: डिफरेंट है।
1: कुछ शब्द वो
0: हाँ,
1: गुजराती के आ रहे हैं।
0: गुजराती के थोड़े मराठी, तो ये क्या घुमक्कड़ लोगों के ने कभी महाराष्ट्र से कुछ ले लिया, कोई गुजरात से कुछ ले
1: तो एक
0: लिया,
1: मिक्स है।
0: कुछ राजस्थान से कुछ ले लिया, तो ये भाषा मुझे आती है, गुजराती भाषा मुझे आती है, हिंदी मुझे आती है, उर्दू जबान भी, यानी कि नुक्ते उकते
1: हाँ
0: लग जाते हैं ठीक ठाक, तो ये है, अंग्रेजी व्यवहारिक रूप से जितनी बोल सकता है उतनी मैं बोल लेता हूँ।
1: जी
0: तो भाषा मुझे लग रहा है कि एक अभिनेता का सबसे बड़ा वो होता है एलिमेंट, कि जिसको वो जितना मांझ ले उतना अच्छा है।
1: बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग शहरों में हैं और हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं, उनको लगता है कि एनएसडी जाएं और मुंबई आ जाएं बस लाइफ सेट है,
0: नहीं,
1: तो
0: बिल्कुल नहीं,
1: उनको अपनी तरफ से कुछ कहिए।
0: मैं बस उनको इतना ही कहूंगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपको विधा सिखाता है,
1: जी
0: और प्रोफेशनल विधा सिखाता है, व्यावसायिक रंगमंच की तालीम देता है, लेकिन वो व्यवसायी एक बहुत बड़ा व्यवसायी है,
1: हाँ
0: तो उस व्यवसाय में आपको

0: आपके ग्राहक खुद ही ढूंढने हैं, है
1: हाँ,
0: ना,
1: और मुंबई शहर आपको पीसता
0: हाँ
1: है।
0: पीसता है, जलना पड़ता है। और ये भी नहीं है कि इसमें नकारात्मकता ही भरी पड़ी है,
1: जी
0: कहीं पर आपका कुछ अच्छे काम आप करते हो तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा कि जो आते हैं और एडिक्शन में भी डूब जाते हैं, है ना, कई और तरह की चीजों में भटक जाते हैं। तो उन चीजों में अगर ना भटके और अगर आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, चाहे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट से किया हो,

0: हैं ना, कई और तरह की चीजों में भटक जाते हैं। तो उन चीजों में अगर ना भटके और अगर आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, चाहे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट से किया हो, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII से किया हो, या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से किया हो, BNA से किया हो, तो प्रशिक्षण का जो एक बल लेकर अगर आप काम करते हो तो सफलता आपको मिलेगी। सफलता को आप ही कैटेगराइज करते हो कि किसको है। जैसे अभी अक्षय खन्ना जी को हम देख रहे हैं धुरंधर फिल्म में,
1: बिल्कुल
0: तो उन्होंने यही कहा कि सफलता को आप कैसे मापते हो, है ना, कि मुझे आप सलमान खान और शाहरुख खान के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो, मैं
1: बिल्कुल
0: अपने लेवल पर सफल हूं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी बात है।
1: क्या बात है। चलते चलते एक गाने की फरमाइश है
0: शैलेंद्र जी मेरे बहुत फेवरेट रहे,
1: जी।
0: और रेणु जी
1: वाह
0: की
1: वाह,
0: कहानी पर उन्होंने जो
1: तीसरी
0: फिल्म
1: कसम बनाई।
0: तीसरी कसम, उसका अगर आप एक सुना दे, दुनिया बनाने वाले क्या
1: वाह
0: तेरे
1: वाह
0: मन में
1: वाह,
0: सितारे।
1: जरूर ये गाना सुन।

0: है कि एक दिया सारे अंधेरे को भगा देता है। तो
1: बिल्कुल
0: रेडियो घर में ऐसा है जो हमारी नकारात्मक शक्ति को बाहर फेंकता है और एक रचनात्मक ऊर्जा को हमारे घर में लाता है।
1: क्या
0: तो
1: बात है,
0: रेडियो यंत्र घर में रहना वो ऐसा ही है जैसे एक परिवार का सदस्य आपके साथ रह रहा है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभिनेता आलोक गागड़ेकर से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: आलोक जी, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद जी, अपना समय देने के लिए।
1: जी जी जी धन्यवाद, और बहुत ही शुभकामनाएं हैं विविध भारती को, आप पूरी टीम को, जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं। और क्या बताऊं मैं आपको कि रेडियो सच में हमारी जिंदगी का एक संगीत है, और अगर इंसान को आप किसी एक अरण्य में डाल दे, किसी घोर जंगल में डाल दे जहां सिर्फ निराशा निराशा ही हो, गुफाओं में, और वहां एक रेडियो चल रहा हो ना, तो वो भी, कहते हैं ना रविंद्रनाथ टैगोर ने

0: कुछ दिल ने कहा,
1: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
0: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
0: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है। हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
1: उसने तोड़ी पारंपरिक FM 101.5 MHz वर आणि प्रसार भारतीच्या न्यूज ऑन AIR या ॲपवर आपण ऐकत आहात आकाशवाणीचं अमरावती केंद्र। ठीक 5 वाजता आहेत। ठळक मराठी बातम्या आकाशवाणी महाराष्ट्र मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून आता आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत।

जिसका साथ हो गुनगुनी धूप सा, आंखों में सुबह शाम उसी का ख्वाब उतर आता है, पास ना होते हुए भी हर पल उसका ख्याल घेरे रहता है। जब वो ना हो तो इंतजार उसका, जब कभी करीब पाऊं तो वो मौन हमारा। सचमुच कितना प्यारा है ये साथ तुम्हारा, वो जो हम कुछ कहते कहते एक ही शब्द पर ठहर जाते हैं ना, थोड़ा रुक जाते हैं और मुस्कुरा देते हैं, बस वो एक पल मोहब्बत में घुला हो जैसे हम एक दूसरे की बाहों में सिमट गए हो जैसे।

सहारा है उसका एहसास। वो एहसास जो किसी की हंसी सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान ला दे, उसे उदास देखकर आपकी आंखें नम हो जाएं, लव्स जहां चुप हो जाएं, उसकी खामोशी पूरी दास्तां कह जाए, वो उसकी प्रतीक्षा जिसमें शिकायत कम और दुआएं ज्यादा हो, वो आंखें जो अपने आप में समाए हैं मेरा पूरा संसार, जिसके बस पास आते ही मौसम बदल जाते हैं।

अंतराल के इस पार आप सबका एक बार फिर स्वागत है। उस गगन पर चमकते चांद को देखा है कभी गौर से? तुम हो वो चांद मेरे लिए। चांद तो एक है और तारे अनगिनत। इसीलिए तो चांद इतराता है, इठलाता है। उस चांद के सबसे करीब वो जो एक छोटा सा सितारा है ना, बस मैं वो सितारा बनना चाहती हूँ, तुम्हारे सबसे करीब और सबसे खास।

तुम्हारी बाहों में आते ही जीवन की सारी थकावट बिखर जाती है, बेचैन सांसों को चैन मिल जाता है, हसरतें सर उठाती हैं, सपने महक जाते हैं, वक्त ठहर जाता है, मन प्यार की धुली चांदनी में शीतल हो उठता है। सच मानो सबसे महफूज जगह तुम्हारी बाहों की पनाह है मेरे लिए।

तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत आदत हो। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी सबसे प्यारी याद है। जैसे पहली बारिश याद रखती है सूखी जमीन को, जैसे पहला सपना याद रहता है मासूम से मन को, तुम रच बस गए हो मेरी रूह में। सुकून हो तुम मेरा, बसेरा हो मेरा।

आज का छाया गीत संपन्न करने के लिए अनुराधा उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से। आवाज़ विशाल मिश्रा की थी, गीत के बोल अनुराग शर्मा के और संगीत प्रीतम का।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हम

0: एका डॉक्टर शकुंतला भरणे
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म लक्की से। आवाज़ अदनान सामी की थी। गीत के बोल समीर के और संगीत अदनान सामी का है।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है, जहाँ उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म देवरा से, आवाज़ शिल्पा राव की थी। गीत के बोल कौशल मुनीर के और संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र का।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी।
1: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म मीनाक्षी से। आवाज़ अलका याग्निक की है, गीत के बोल राहत इंदौरी के और संगीत AR रहमान का। थोड़ी ही देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, शेष कार्यक्रम समाचारों के बाद।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकननी की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया और प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामिन, मैलिएट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटल कोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। यह दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहला जहाज एमटी सीबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुटलैंड तट के पास अगवा किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों

0: की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पहले कैथोलिक संघीय मंत्री और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक शहबाज भट्टी की हत्या के 15 साल बाद भी ईसाई, हिंदू और अहमदिया सहित अल्पसंख्यक समुदाय देश भर में भेदभाव और धार्मिक स्थलों पर हमलों का सामना कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया संस्थान पीजे मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अत्याचारों में अपहरण, जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह शामिल है। रिपोर्ट में इष्निंदा कानूनों के दुरुपयोग का भी उल्लेख है। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर दो श्लोकों के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पाठ रोकने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की।
1: आज इस प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे। वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुलच्छित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना और लोगों, विशेषकर युवाओं को सेवा कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की। और खेलों में BWF विश्व चैंपियनशिप में के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से जारी है। महिला डबल्स के पहले गेम में भारतीय जोड़ी ने अपने नाम किया है। यह मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच अम्स्टरडैम में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणीच हे नागपूर केंद्र आहे। प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या।
3: आकाशवाणी नागपूर हेमांगी कुलकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। व्यसनांपासून दूर राहून विद्यार्थ्यांनी शिक्षण, क्रीडा, कौशल्य विकास आणि राष्ट्र उभारणीकडे वळावं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं आवाहन। विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आज पुण्यात छात्रों की गूंज या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना संबोधित करणार। कार्यक्रमावरून भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये आरोप प्रत्यारोप। साखरेच्या दरात क्विंटलमागे 500 रुपयांची वाढ, किरकोळ दर 60 रुपयांवर। आणि नागपूरच्या राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण आणि भूमी उपयोग नियोजन ब्युरो NBSSLUP चा सुवर्ण महोत्सवी स्थापना दिन उद्या साजरा होणार। आता सविस्तर बातम्या। अंमली पदार्थाविरोधातल्या लढ्यात राज्य सरकार आणि राज्यातल्या सर्व यंत्रणा मागे हटणार नाही असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय। मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आज नशामुक्त नवी मुंबई अभियानाअंतर्गत कॅम्पस कनेक्ट या मोहिमेचा प्रारंभ झाला, त्यावेळी ते बोलत होते। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नशामुक्त भारत अभियान अंतर्गत संपूर्ण भारतात ड्रग्ज विरोधात युद्ध पुकारलं आहे। हे जनतेचं, युवा शक्तीचं युद्ध असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं।
4: आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी नशामुक्त भारत अभियान याची घोषणा केली आणि या घोषणेच्या अंतर्गत संपूर्ण भारतामध्ये ड्रग्सच्या विरुद्ध, नार्कोटिक्सच्या विरुद्ध आणि सर्व प्रकारच्या नशेच्या विरुद्ध एक मोठं युद्ध हे आपण पुकारलंय आणि हे युद्ध जनतेचं युद्ध आहे, हे युद्ध युवा शक्तीचं युद्ध आहे, हे युद्ध आमच्या सर्व विद्यार्थ्यांचं युद्ध आहे की ज्या माध्यमातून आपल्याला नशेला सर्व प्रकारच्या व्यसनांना पराभूत करायचंय, पराजित करायचंय।
3: प्रत्येक शैक्षणिक कॅम्पस हे या लढाईचं केंद्र असून प्रत्येक विद्यार्थी या नशाविरोधी मोहिमेचा सैनिक आहे। व्यसनांपासून दूर राहून विद्यार्थ्यांनी शिक्षण, क्रीडा, कौशल्य विकास आणि राष्ट्र उभारणीकडे वळावं। व्यसनाच्या

0: सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये गीत आपने सुना फिल्म चमेली से। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत संदेश शांडिल का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझवारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्री,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों की 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म जुग जुग जियो से। आवाज़ें कनिष्क सेठ और कविता सेठ की थी। गीत के बोल ट्रेडिशनल और संगीत कनिष्क सेठ और कविता सेठ का ही था।
1: रुपहले पर्दे की एक अभिनेता,
2: वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि तुम कौन से जगह से हो। वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ और उसमें एक शहर मेरा क्यू था। तो वो बड़ा मजेदार सीन है। वो
1: जिन्हें है रेडियो से बेशुमार प्यार,
2: कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। मेरे नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी। सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
1: एक कहानी जिसमें है संघर्ष और जिद।
2: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती।
1: अभिनेता आलोक गागडेकर, बॉम्बे टॉकीज, 22 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रहना है तेरे दिल में से। आवाज़ें सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की थी। गीत के बोल समीर के और संगीत हैरिस जयराज का।
1: रुपहले पर्दे के एक अभिनेता,
2: वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, तो वो बड़ा मजेदार सीन है वो।
1: जिन्हें है रेडियो से बेशुमार प्यार,
2: कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। मेरी नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी, सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
1: एक कहानी जिसमें है संघर्ष और जिद।
2: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती।
1: अभिनेता आलोक गागडेकर, बॉम्बे टॉकीज, 22 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म शिद्दत से, आवाज़ें सचिन टंडन और निकिता गांधी की थी। गीत के बोल प्रिया सरैया और संगीत सचिन चिकर का। आइए अब आपको बता दें झरोका के अंतर्गत आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन 6:35 पर। संगीत सरिता कार्यक्रम सुन सकेंगे शाम 6:45 पर। इसमें आप सुनेंगे श्रृंखला ताल प्रभा का छठवां भाग। कलाकार होंगे पंडित कालीनाथ मिश्र जो तबले पर होंगे, प्रस्तुति मनीषा जैन की। विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे। इसमें आप सुनेंगे संगीतकार कल्याण जी को।

कार्यक्रम जिज्ञासा आपको सुनवाएंगे शाम 7:45 पर। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल। इसमें आप सुनेंगे सुनो कहानी काबुलीवाला का पहला भाग, कहानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, वाचन अमरकांत दुबे, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 8:15 पर। समाचार चमकी जी, रात 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। आज के फनकार आपको सुनवाएंगे रात 9:30 पर। इसमें आप सुनेंगे फिल्मकार किशोर साहू को, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत, आलेख एवं स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। ढलती जाए कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:23 पर। रात 11 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत मैटिनी शो।

कल सुबह आप सुनेंगे 6:05 पर वंदन बार, 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्री रामचरित मानस का 289वां भाग।

सुबह 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे श्रृंखला ताल प्रभा का 7वां भाग, कलाकार तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। हम हैं राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। त्रिवेणी कार्यक्रम सुनवाएंगे सुबह 8:15 पर, आलेख एवं स्वर दीपा महेश्वरी का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 8:30 पर। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। इसमें आप सुनेंगे अभिनेत्री सायरा बानो को, प्रस्तुति रमेश गोखले की।

सुबह 10 बजे आप सुनेंगे पिटारा बॉम्बे टॉकीज। इसमें आप सुनेंगे अभिनेता आलोक गगड़ेकर से यूनुस खान की बातचीत, संपादन सहायक रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। कार्यक्रम विविधा आप सुनेंगे सुबह 11 बजे, प्रस्तुति शैलेंद्र हुसनलाल भगतराम की, प्रस्तुति मनीषा जैन की। दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल, सुरीला सफर कार्यक्रम सुनवाएंगे दोपहर 1 बजे। कार्यक्रम त्रिवेणी आप सुनेंगे दोपहर 2 बजे, आलेख एवं स्वर दीपा महेश्वरी का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम मन चाहे गीत, संवादक नेहा शर्मा, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी। तीन बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नाट्य तरंग, इसमें आप सुनेंगे दो फूल जूही के, लेखक हृदय कौल, भारती, निर्देशक दीनानाथ। शाम 4 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम पिटारा, इसमें आप सुनेंगे उजाले उनकी यादों के, नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्र से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग, संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत, 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने नए पुराने, 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम झरोखा, 6:35 पर कार्यक्रम सुन सकेंगे संध्या रंजन। संगीत सरिता कार्यक्रम सुनवाएंगे शाम 6:45 पर, इसमें आप सुनेंगे श्रृंखला ताल प्रवाह का 7वां भाग, तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र कलाकार होंगे, प्रस्तुति मनीषा जैन की। विशेष जयमाला में आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा, महावीर चक्र लेफ्टिनेंट IJS बुटालिया का शौर्य, संपादन एवं प्रस्तुति तेजश्री कांबले की।

शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम साज और आवाज। क्लेरिनेट पर होंगे अमर सिंह जस्सल। रात 8 बजे आप सुनेंगे हवा महल हास्य नाटिका किसकी हार किसकी जीत, लेखन श्री कृष्ण, निर्देशन सत्येंद्र शरद। रात 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। रात 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। इसमें आप सुनेंगे अभिनेत्री सायरा बानो को, प्रस्तुति रमेश गोखले की।

कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:30 पर। रात 11 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम विविधा। अभी आप सुन रहे थे झरोका के अंतर्गत आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संध्या रंजन।

0: की श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: नमस्कार, संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मैं रामकृष्ण दास स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम फिर उपस्थित हुए हैं तबला वादक श्री कालीनाथ मिश्रा जी के साथ। मिश्रा जी,
2: जी,
1: ताल प्रवाह पर कई तालों की चर्चा हो रही है। क्लासिकल में बहुत सारे तालों का नाम सुनते हैं, मत्त ताल, रुद्र ताल, पंचम सवारी, आड़ा चौताल, तिलवाड़ा वगैरह वगैरह। पिछली कड़ी में हमने लोक गीत पर आधारित, लोकगीत में या फिल्मी गानों में जो ताल काफी बजता है, दादरा का जिक्र
2: जी
1: की आपने की थी, आपने बजाया भी है। और भी एक ताल फिल्म म्यूजिक में खूब प्रयोग होता है, उस ताल के बारे में आप बताएं।
2: मैं समझ गया दास बाबू, जहां आपका जिस तरफ इशारा है। पिछली कड़ी में हम थे दादरा
1: जी,
2: और दादरा के बड़े भाई थे, उनका नाम था कहरवा ताल।
1: अच्छा
2: जी हाँ, हम बड़े भाई से बोले कि जो हमारे श्रोता हैं उन कलाकारों के लिए नहीं, जो सीखने वाले कलाकार हैं, जो हमें सुन रहे हैं
1: जी,
2: जो सीख रहे हैं, जिनको तबला गाना इंस्ट्रूमेंट या नाच सीखने का शौक है। मैं बड़ा भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब आपस में बड़े मित्र हैं, और जिसने तीन ताल को देख लिया
1: जी,
2: वो सारे तालों को देख लेगा, क्योंकि तीन ताल हर ताल का राजा है। और कहरवा उसका छोटा भाई है, आठ मात्रे का है वो
1: जी,
2: धागे न तीन धीन।
1: और ये दादरा का बड़ा भाई इसलिए कि दादरा चूंकि छह मात्रे का है, इसलिए
2: दादरा को मैं जब
1: बहुत खूब
2: जी हाँ, जब मैं मंच पे बजाता हूँ, जब स्टेज पे बजाता हूँ अपने बेटे सत्यप्रकाश के साथ, तो हमारे कई प्रोग्राम में फारूक भाई रहे हैं, विनोद भी रहे हैं, तो मैं मनीषा जी इसको देता हूँ कि एक स्त्री कैसे चलती है, वो मैंने दादरा दिया है। क्योंकि दादरा का बड़ा सुंदर चलन था, आपको मैंने कल दिखाया था, कभी मंच पे आप मुझे सुनिएगा कि एक नारी कैसे चलती है, धा ना। और ठीक उसका बड़ा भाई उसका जरा चलन जरा वीर पुरुष है, थोड़ा सा पुरुष। तो देखिए, दादा का बड़ा भाई हो गया कहरवा, और तीन ताल का छोटा भाई हो गया कहरवा।
1: वाह,
2: तो आज हम इस कड़ी में कहरवा ताल को लेके चलते हैं, जो आठ मात्रे का है।
1: क्या बात है।
2: और उसमें एक ताली एक खाली है।
1: वाह,
2: धा गी न ती खाली न धी न धा।
1: अच्छा, इस सिलसिले में मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा, कव्वाली में भी तो आठ मात्रे का ही कुछ ताल बजता है, कव्वाली ताल या उसका कुछ अलग नाम है?
2: नहीं, वही है, लेकिन उसकी स्पीड अलग होती है।
1: अच्छा
2: हाँ, इसमें बहुत से फिल्मी गाने भी हैं।
1: अच्छा, इसमें और भी एक मैं बात जानना चाहूंगा
2: जी,
1: ये कहरबा के जो ठेके होते हैं, किताब में कुछ लिखा होता है, लेकिन बजाते वक्त जैसे गजल में या कवाली में या भजन में
2: जी,
1: या ठुमरी में ही अलग अलग ठेके बजते हैं, अलग अलग बोल होते हैं, उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को थोड़ा कुछ बताइए।
2: अरे बाप, बहुत सुंदर सवाल किया आप। देखिए क्या है, हमारा अंदाज तो वही है, इसके जो मेन ठेके हैं धा गे न ती न क धी न, अगर हम इसको किसी गजल के साथ या भजन के साथ बजाएंगे, और अगर वही ठेका बजाएंगे तो वो उससे मैच नहीं होगा
1: जी,
2: उससे मैच नहीं होगा, इसलिए हम उसको प्रकार में पलटे में बजा के धा गी ना ती ना धी ना धा गी ना। अब इसको थोड़ा सा अगर अंदाज

0: जो है ना छपकी, ये श्रेय जाता है नौशाद साहब को, एलपी साहब को, कि उन्होंने दादा कहरवा को छपकी में कैसे लिया। इसको कहते छपकी, जो धिरकिट हम बजाते हैं, देखिए वहीं से आया वो। है भाई अंदाज।
1: अच्छा, नाल में भी क्या तबले की अंदाज बसता है या
0: नहीं? नाल का अंदाज अलग हो गया, लेकिन ये आपस में बड़े अच्छे मित्र हैं।
1: क्या बात है,
0: ये आ गया उड़ीसी के साथ जो बदलना था, पर है कहरवा का चलन है वो, है
1: लावणी।
0: लावणी, हाँ। लावणी। तो हम आज आपके सामने छोटा सा कहरवा ताल में, श्रोता इसका आनंद लीजिए, देखिए क्या आनंद है। विनोद जी एक छोटा सा कुछ मुखड़ा बजाएंगे, मैं उसी में आता हूँ
1: जरूर।

0: अब इसमें उड़ान, ये खास बनारस से आया है।
1: अच्छा,
0: ये बनारस में ही उड़ान बजाते हैं। उसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उस अपने गुरु लोगों का जिन्होंने उस चीज को पैदा किया है
1: जी।
0: कंठे बाबा किशन महाराज जी, उड़ान क्या चीज है
1: जी?
0: उसको कहते हैं ठीक इसका डबल लेके

0: अंदाज
1: बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या क्या खूबसूरत चीजें आप हमारे श्रोताओं के लिए पेश कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है।
0: इसमें आपको बता दूं और श्रोताओं को बता दूं कि नौशाद साहब, एक बात बताना चाहूंगा, कई बार हम जब प्रोग्राम बजाते थे, मतलब तो बजाते हैं, जब नौशाद साहब जिंदा थे
1: जी,
0: उन्होंने मेरा एक कायदा सुना था धीरे धीरे कीर्तन
1: जी,
0: तो वो बैठे थे और बोले कि बेटा कालीनाथ, तुमने बाया और धीरे का बड़ा अच्छा अंदाज किया है, तो उनका मुझे आशीर्वाद मिला। उन्होंने एक पिक्चर गंगा जमुना, ताल कहरवा में ही है और राग है मिस्र पहाड़ी, हमारे रफी साहब ने गाए हैं, उसका गाना है, जरा सुर दे देना भैया। हो नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बे।

ताल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी छठी कड़ी। जाने माने तबला वादक श्री कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर।

सब बातें हैं, बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिवर जी का लिखा हुआ, वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कन्हैया जी भाई, ये गाना मेरे लिए रख लीजिए और मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उसको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि ये बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मना डी जी ने गाया हुआ है। आप ये गाना सुनिए। आप

अभी जो मैं आपको एक गाना सुना रहा हूँ वो फिल्म हिमालय की गोद में, मैं तो एक ख्वाब हूँ इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए, तो इसमें तो सही वाक्या होगा हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फ़ोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आपके मुँह से ये गाना सुनूँ। तो हमने उनको म्यूज़िक हॉल पर बुला लिया, तो एक दफ़े सुनाया, उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफ़े उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफ़े जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ इस बाप से तू प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है। तो लीजिए कमर जलालाबादी का लिखा हुआ और मुकेश जी का गाया हुआ और विजय भट्ट जी का फिल्माया हुआ ये गाना सुनिए।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय माला। आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जानी मानी संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी ने। तो सुनिए कल्याण जी द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: शेतकरी बंधू भगिनींनो आपण ऐकत होतात कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते होते रोशन जाधव। ही आकाशवाणी मुंबई केंद्राची निर्मिती होती।

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म रेड 2 से। आवाज़ें परंपरा टंडन और सचेत टंडन की थी। गीत के बोल कौसर मुनीर के और संगीत सचेत परंपरा का।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है, जहाँ उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा। सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: श्रोताएं, गीत आपने सुना फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से। आवाज़ सनम पुरी और नीति मोहन की थी। गीत के बोल अन्विता दत्त के और संगीत विशाल एन शेखर का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्री।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों की 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैला

0: भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म बागी 4 से। आवाज़ जोश ब्रार की थी। गीत के बोल परंपरा टंडन के, और संगीत जोश ब्रार और आगास का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे से समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना, बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और व्यापक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान

0: ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
1: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहाँ लोग उपस्थित रहे, तो आप वहाँ आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है, तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एक रिपोर्ट।
2: श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया, क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुए प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
3: संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतर धार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, युवा नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सीमा पार युवा आदान प्रदान को विस्तारित करने पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विकसित भारत एट 2047 युवा राजनीतिक नेताओं के संवाद में डॉक्टर सावंत ने कहा कि युवा राजनीतिक नेताओं को पद पाने की लालसा के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने उनसे नीति निर्माता, जमीनी स्तर के आयोजक, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता और सामाजिक उद्यमी के रूप में विकसित होने का आग्रह किया। डॉक्टर सावंत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही विकास पहलों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है,

0: के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीकों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
1: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ

0: से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
1: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले 400 दिन से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मेघालय और असम सरकार के बीच आज गुवाहाटी में संयुक्त बैठक हुई। इसमें 19 अगस्त को शिलांग में असम में पंजीकृत वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर असुनिया भालंगधार और असम सरकार में सीमा संरक्षण, असम समझौता कार्यान्वयन और विकास मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में कोयनाधार स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर जोरम अनिया ने आज गोमती जिले के अथारो भोला में गरिया अकादमी मॉडल स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डॉक्टर अनिया ने जमातिया होडा समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में आज सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को 27 से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिस का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह नोटिस झूठा है और अनाधिकृत है। सभी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रालय ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सीजीएचएस चैनलों के माध्यम से जारी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और एआई से तैयार किया गया है। इकाई ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री ने ऐसी किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। जांच इकाई ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है जो फर्जी योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगने और उनका पैसा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उड़ीसा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।
2: उड़ीसा में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम से बारिश बढ़ने की उम्मीद है। IMD भुवनेश्वर ने कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है और ये बारिश का दौर आने वाले हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है। आज केंदुझर, मयूरभंज, कलाहांडी और नवरंगपुर के लिए भारी बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है जबकि 24 और 25 तारीख को केंदुझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग का अनुमान है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। और FIH हॉकी पुरुष विश्व

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म रंग दे बसंती से, आवाज़ ए आर रहमान और नरेश अय्यर की थी। गीत के बोल प्रसून जोशी के और संगीत ए आर रहमान का।
1: रुपहले पर्दे की एक अभिनेता,
2: वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, तो वो बड़ा मजेदार सीन है वो।
1: जिन्हें है रेडियो से बेशुमार प्यार,
2: कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। मेरे नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी, सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
1: एक कहानी जिसमें है संघर्ष और जिद।
2: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती।
1: अभिनेता आलोक गागडेकर, बॉम्बे टॉकीज, 22 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोता, एक गीत आपने सुना फिल्म अतरंगी रे से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और शाशा तिरुपति की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

0: श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म साथिया से। आवाज़ें के कुणाल और प्रवीण मणि की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: नमस्कार।
1: तुम काला बाजार किसके लिए करते थे?
2: रघुवीर के लिए।
3: रघुवीर के लिए?
1: जुर्म करने वाला चूंकि अपना बचाव नहीं करता और साफ अपने जुर्म को कबूल कर लेता है तो इसी से वो रहम का हकदार नहीं हो जाता। ये वर्ष आज तक जो कानून को दगा देता रहा अचानक आज वो शहीद बनने चला है। ये तो वही बात हुई कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। हमारा ही खून चूस चूस कर जो पलता रहा अचानक आज वो अपना खून हमें दान करने चला आया है। कड़ी से कड़ी सजा अदालत अगर ऐसे आदमी को नहीं देगी तो और किसे देगी?
0: ये आवाज फिल्म काला बाजार में उस मशहूर अदाकार की है जिसे दुनिया जानती है किशोर साहू के नाम से। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक किशोर साहू पर।

गुजरे दौर के सिनेमा के चहेते दर्शकों के लिए किशोर साहू एक सुपरिचित नाम है। बहुआयामी प्रतिभा के कलाकार किशोर साहू ने 1937 से 1980 के बीच 22 फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1915 में तब के मध्य भारत और आज के छत्तीसगढ़ प्रांत के दुर्ग शहर में जन्म हुआ था किशोर साहू का। नागपुर के मॉरिस कॉलेज से उन्होंने बीए की पढ़ाई की थी। किशोर साहू के पिता रायगढ़ रियासत के दीवान थे। कॉलेज के दिनों से ही किशोर साहू कहानियां लिखा करते थे। अपने कहानी लेखन से ही वो सिने जगत के संपर्क में आए। तब के बंबई में उन्हें सिने जगत में पांव जमाने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। मुंबई में अशोक कुमार और देविका रानी के प्रयासों से किशोर साहू को बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म जीवन प्रभात में काम करने का मौका मिला। किशोर साहू ने कुछ अरसा मुंबई में और बिताया और फिर परिस्थितियों के चलते वापस नागपुर लौट गए। नागपुर में किशोर साहू के मित्र थे द्वारकादास डागा। उन्हीं के सहयोग से किशोर साहू ने बाद में मुंबई वापस लौटकर अपनी फिल्म निर्माण संस्था की नींव रखी। इस संस्था का नाम था द इंडिया आर्टिस्ट लिमिटेड। अपने इस बैनर तले उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई बहुरानी। अपने फिल्म बैनर तले किशोर साहू ने जो कुछ और मशहूर फिल्में निर्मित की उनके नाम हैं पूनम की रात, पुष्पांजलि, मयूर पंख और बेटी नैना साहू को लेकर बनाई गई फिल्म हरे कांच की चूड़ियां।

किशोर साहू अभिनेता, निर्माता, निर्देशक बनने से पहले लेखक थे। कहानी लेखन पर उनकी अच्छी पकड़ थी। उनकी ये प्रतिभा कई फिल्मों में नजर आती है। एक लेखक के रूप में उनकी चर्चित फिल्में हैं मयूर पंख, दिल अपना और प्रीत पराई, हरे कांच की चूड़ियां, औरत और तीन बहुरानियां। इस फिल्म की कहानी एक मध्यवर्गीय संयुक्त परिवार, उसके आर्थिक स्थिति और परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों को रेखांकित करती है। दिल अपना और प्रीत पराई का लेखन करने के साथ साथ किशोर साहू ने इस फिल्म को निर्देशित भी किया था। इस फिल्म के गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

0: निर्देशक के रूप में किशोर साहू की अन्य मशहूर फिल्में हैं 1942 की कुंवारा बाप, राजा, शरारत, वीर कुणाल, सिंदूर, साजन, 1948 की नदिया के पार, सावन आया रे, काली घटा, मयूर पंख, हैमलेट, किस्मत का खेल, बड़े सरकार, गृहस्थी, घर बसा के देखो, हरे कांच की चूड़ियां, पुष्पांजलि, धुएं की लकीर और पूनम की रात।
1: तुम कहां ले चले हो सजन अलबेले, ये कौन सा जहां है बताओ तो।

और साहित्यकार अमृतलाल नागर किशोर साहू के अभिन्न मित्रों में से थे। नागर जी ने किशोर साहू के लिए 3 फिल्में लिखी थीं, राजा, वीर कुणाल और कुंवारा बाप। फिल्म वीर कुणाल की नायिका थीं अभिनेत्री तनुजा और नूतन की मां शोभना समर्थ। सन 1942 में बनी फिल्म कुंवारा बाप और सन 1943 में

22 अगस्त सन 1986 को इस दुनिया में अपने जीवन रूपी रंगमंच की आखिरी भूमिका निभाकर किशोर साहू इस दुनिया से विदा हो गए। हमारे पास अब उनके अभिनय से सजीव फिल्में हैं और उनके परिजनों इष्ट मित्रों के पास हैं उनकी स्मृतियां।

0: संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा। पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: आज के ये फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक किशोर साहू पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का। संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

ये धड़कनों का कारवां जो कभी किसी के नाम से तेज हो जाता है, बहकने लगते हैं कदम, प्यार में किसी से मिलने की ऋतुएं भी इन वादियों में कई महकते हुए गुल खिला देती हैं, जिनकी रंगत किसी के हुस्न की मिसाल बनकर तन मन को उमंग से भर देती है और दिल गा उठता है।

मन की तरंगे किसी के इंतजार में बेकरार हो राह निहारने लग जाती हैं। बहारों की खुशबू सांसों में घुलकर मिलन की आस जगा देती है। उनकी यादों की कसर दिल के आईने में एक अक्स उभारने लग

अंतराल के बाद छाया गीत में आप और हम आ गए हैं साथ साथ। पेश है मोहब्बत भरे दिलों की दास्तां। ये इजहारे मोहब्बत भी खूब रंग लाया, मेरे दिल की सदा उनके दिल की सदा बन गई। वो पहलू में आए और यूं बैठ गए जैसे चांद के पास चांदनी रहती है। उनका वो साथ, गर्म सांसों का एहसास, फिर ओठों पे उनके थिरकते गीतों की फुहार इस मुलाकात को और भी रोशन कर उठी। बस दिल की ना पूछिए, वो तो चुपके चुपके आहें भरने लगा।

कौन रोक सकता है दिल को जब नजरों से नजरें मिलती हैं, बिना कहे ही सारी बात हो जाती है। मोहब्बत के सफर पे चल पड़ते हैं जब दो दिल, तो ढूंढते हैं मंजिल एक होने की।

लेकिन खामोशी बहुत देर तक कहाँ खामोश रह पाती है। जब बात आशिकों के दिलों की हो तो जुबां बोल पड़ती है, और हम सफर बनने तक के सफर में कई वादे कस्में दिल कर ही बैठता है। तभी तो एक दूसरे के मोहब्बत पर चाहत पर यकीन करने को दिल मचल उठता है। तभी तो ये गीत होठों पर खुद ब खुद सज उठता है।

कहीं ना कहीं इन गीतों ने आपके दिल को छुआ तो होगा, आपकी यादों ने दस्तक भी दी होगी। फिलहाल मुझे इस सफर से विदा लेनी होगी। प्यार भरे नमस्कार के साथ मंजरी वर्मा को अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बच्चा मर जाओ।

0: हम सफर वो मेरे साथ हो गई, एक अजनबी हसीना से जो मुलाकात हो गई।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बलों और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जैन धर्म भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जैन परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से भगवान तीर्थांकर की 20 से अधिक चोरी हुई प्राचीन प्रतिमाओं को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ सम्पन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तंत्र श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य महत्वपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने वाला दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये वीडियो AI से तैयार किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिषा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और तैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है और कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय रेशमा तिवारी।